0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं डॉक्टर प्रीति सिंह। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जो बिना किसी दवा के और बिना ही किसी इलाज के एक दर्शन के द्वारा हमारे मन को गहराई से बदल सकती है, जिसको कहा जाता है ध्यान, जिसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में, सोशल मीडिया के दबाव में, पढ़ाई और नौकरी की चिंताएं, इन सब के बीच में मन को शांति कहाँ से मिले? क्या कुछ ही मिनट रोज ध्यान करके हम सच में ज्यादा शांत, सकारात्मक और संतुलित हो सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन से जुड़े हुए एक साधक जो भक्ति योग और मंत्र ध्यान का अभ्यास करते हैं। ये सिर्फ एक साधक ही नहीं है, ये एक पेशे से एक इंजीनियर है और इस्कॉन भक्ति शास्त्री के नाम से इनको जाना जाता है, और जो कि TTC सर्टिफाइड भगवत गीता ट्रेनर भी हैं, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने 13 साल वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, अलग अलग विभागों में, R&D डिपार्टमेंट्स में इन्होंने IT कंपनीज में काम किया है, और पिछले 10 साल से इन्होंने वैल्यू बेस्ड सेशन और वर्कशॉप्स ली हैं, देश और विदेशों में इन्होंने यात्राएं की हैं और न्यूयॉर्क, USA, लंदन, कैलिफोर्निया, चाइना, ये कुछ ऐसे नाम में बता रही हूँ, ऐसे स्थान में बता रही हूँ जहाँ पे जाके इन्होंने भगवत गीता के प्रसार और प्रचार में अपना योगदान दिया है। बल्कि इसके अलावा ये बहुत सारे अकेडमिक कोर्सेज भी जो हैं ये डिलीवर करते हैं, जिसमें भगवत गीता, इमोशनल इंटेलिजेंस और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप्स लगाई हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो आयोजित किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है हमारे बीच में, जीव गोपाल दास जी, और जो हमें बताएंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र, जप माला और सरल साधना के जरिए कोई भी साधारण व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिकता, एकाग्रता और आनंद कैसे ला सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का सफर ध्यान और भक्ति के रंगों के साथ में। जीव गोपाल दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनो शारदा में।
1: धन्यवाद मैम, आपके इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत अच्छा मंच है जो कि आप इतने सालों से बहुत सुंदर रूप से लेके चल रहे हैं। रियली थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इनविटेशन जो है एक्सेप्ट करने के लिए, और मैं खुद बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि आप पेशे से एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग से आप कैसे भक्ति मार्ग में आप रमे, कैसे इस मार्ग पे आए और कैसे इस्कॉन का एक हिस्सा बन के आप गीता के प्रचार प्रसार में अपने आप को शामिल करने के बारे में सोचा?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैंने 13 साल इंडस्ट्री में जॉब किया, पूरी दुनिया में जाके आया, लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने हर जगह देखी और वो थी हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो खुश नहीं है। मेरा सफर हुआ उस खुशी के पीछे भागने की। पेशे में तो मैं भागता रहा और अपने आप को एंजॉय किया, लेकिन जब उस खुशी की दौड़ में भागा तो मुझे एहसास हुआ कि पेशे से पूरी बात नहीं बनेगी, थोड़ी सी कमी है। उसको पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है, जब हम कोई इच्छा करते हैं तो पूरी प्रकृति और भगवान सब मिल के हमारे लिए कार्य करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मेरे हाथ में श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज मेरे हाथ में आई, और उसको क्योंकि एज एन इंजीनियर मुझे रिसर्च में बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, भगवद गीता पढ़ना शुरू किया इसी एटीट्यूड के साथ, स्क्रूटिनाइजिंगली, इसमें कुछ गलती हो सकती है चलो पकड़ते हैं,
0: क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: एग्जैक्टली, गलती तो नहीं मिली लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया और इससे मैं भक्ति योग में जुड़ा।
0: किस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप?
1: जब हम देखते हैं भगवद गीता हमें बताती है कि आप इस संसार में जब भी जितनी भी खुशी, किसी भी वस्तु में जितनी खुशी को एंजॉय कर सकते हैं, वो वस्तु आने वाले समय में आपको उतना ही दुख प्रदान करने वाली। उदाहरण देखिए, आप मान लीजिए बहुत 1-2 साल तक पैसा सेविंग करते हैं कि मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है।
0: जी जी।
1: और आप खरीद के आ जाते हैं शोरूम के बाहर निकलते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकलते हैं और कार को आप जैसे ही टर्न मारते हैं और रोड पे आते हैं, अचानक से लेट से रिक्शा वाले ने आके स्क्रैच मार के निकल गया। तो बताइए वो स्क्रैच आपकी गाड़ी पे लगा या आपके दिल?
0: बिल्कुल दिल पे लगा।
1: तो इस गाड़ी ने जितना सुख दिया,
0: आपने तो मुझे कुछ याद भी दिलवा दिया कि हम कहते हैं ना कि ओनली योर चाइल्ड हैज द कैपेसिटी टू हर्ट यू मोस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, जितना ख्याल उनका रखते हैं, जितनी खुशी वो हमें देते हैं, तो क्या एक वक्त पे वो हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं और वो देते हैं।
0: अच्छा हमने भी दिया है, जब हम बच्चे थे तो हम भी अपने जो है माता पिता को पेरेंट्स को परेशान करते ही थे, तो दुख तो हमने भी दिया है। ये तो एक जनरेशनल प्रोसेस है जो आगे बढ़ रहा है।
1: यस, आप देखेंगे कि जिससे जितना लगाव है उससे जितना प्रेम मिलता है उससे उतना ही क्लेश भी मिलता है।
0: ओके
1: राइट। ये केवल दूसरों की बात नहीं है, रिश्तों की बात नहीं है, स्वयं हमारा शरीर भी जितना सुख देता है वो जाते जाते उतना दुख भी दे के जाता है।
0: जी,
1: हमारा
0: जी।
1: मन जितना हमें सुख देता है उतना ही दुख भी जाता
0: है। देकर
1: बिकॉज इस संसार में एक कंसेप्ट है कि सुख के साथ दुख फ्री में मिलेगा, तो दो ऑपोजिट पोल्स के बीच में हमेशा हमें ट्रेवल्स करना पड़ता।
0: तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक पैकेज है जो कि साथ में ही आएगा।
1: लेकिन भगवत गीता हमें बताती है कि सुख और दुख के ऊपर भी एक ऐसी दुनिया है, जब सुख के पीछे भागते तो दुख मिल सकता है, लेकिन हाँ। एक ऐसी दुनिया है जहाँ की अगर हम सुख के पीछे भागेंगे तो सुख बढ़ता चला जाए, और उसको कहते हैं वो एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि ये दो पोल्स के बीच में दुनिया नहीं चलती। जब सुख के पीछे भागते हैं तो बढ़ता जाता है, और उसको सुख नहीं बोलते, उसको आनंद कहते हैं।
0: आनंद कहते हैं।
1: इस आनंद की खोज हमने शुरू करी और ये बढ़ता चला गया।
0: तो किस प्रकार का आनंद है ये जीव गोपाल दास जी जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम भी उस आनंद की अनुभूति करना चाहेंगे आपकी मौजूदगी के साथ में?
1: ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और भगवत गीता बताती है कि ऐसे प्रश्न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अगर इसलिए आप सबके मन में भी यही प्रश्न है कि हम कैसे इस सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, इस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको ABCDE फॉर्मूला देंगे। ए फॉर्मूला इस ऐसे लोगों के साथ पहले एसोसिएट कीजिए जो कि इस आनंद की खोज में हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं तो क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर नहीं बनते अगर वो हॉकी के मैदान में जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते।
0: जी,
1: विच मीन्स कि उन्हें क्रिकेट के एक्सपर्ट्स का एसोसिएशन
0: चाहिए था,
1: और एक समय उन्हें चाहिए था, और एक ऐसा समय आया जब पूरी दुनिया उनके एसोसिएशन के पीछे दीवानी थी। सो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: यानी जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमें बनाने में, हमारी पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करने में।
1: एग्जैक्टली। आप देखिए कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर होना चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और बताने आजकल कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए, इनसे दूर होना चाहता हूँ। परंतु ये दूर नहीं हो पाते, प्रयास करते हैं, हर साल रिजोल्यूशन लेते हैं कि अब नहीं करूंगा, ये आदतें मैं छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ पाएंगे जब तक कि ऐसे लोगों का एसोसिएशन नहीं लेंगे जो कि छोड़ चुके हैं या छोड़ने का सीरियस प्रयास
0: कर रहे हैं, या इस प्रकार के वातावरण में रहते ही नहीं है, उसका प्रयोग करते ही नहीं है।
1: एग्जैक्टली।
0: तो देखिए जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है हमारा, और इसके जो श्रोता है वो काफी हद तक एक छात्र कम्युनिटी भी है, स्टूडेंट

0: कम्युनिटी भी हैं, तो ख़ास तौर पे मैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बात आपसे पूछ रही हूँ कि समय के साथ में कई बार हमारे वातावरण के भी प्रभाव में आके हमारे कुछ स्टूडेंट्स कुछ एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो उस एडिक्शन से बाहर निकलने का भक्ति साधना में क्या जरिया हो सका है?
1: आपका ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा स्पिरिचुअलाइज्ड क्वेश्चन है। इस प्रश्न के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, पर देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं कि नहीं।
0: जी।
1: सो फर्स्ट थिंग इज, अगर स्टूडेंट्स किसी भी तरह के एडिक्शन में फंसे हैं तो उन्हें सबसे पहली चीज ये सोचनी चाहिए थी क्या वे बदलना चाहते हैं। अगर उनके अंदर से प्रश्न आता है मैं बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए उन्हें ऐसे व्यक्तियों से एसोसिएशन लेना पड़ेगा जो कि अपने जीवन को बदल चुके हैं। मैं एक सुंदर सा उदाहरण देता हूँ। शीला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, 1966 में वो न्यूयॉर्क पहुंचे, और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद
0: जी
1: वो उनके गुरु ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था कि जाकर आपको विदेशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है भगवद गीता और भागवत धर्म का।
0: जी।
1: तो इसीलिए वे पहुंचे वहां पर, और वहां उन्होंने देखा कि समाज में कोई नियम ही नहीं है। एडिक्शन तो छोड़ दीजिए, एक्सट्रीम एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई ऐसा एडिक्शन नहीं था जो वो करते थे।
0: जी।
1: नहीं करते थे।
0: हाँ।
1: परंतु शिला प्रभुपाद ने उनको एक चीज दी, जैसा हमने डिस्कस किया, एसोसिएशन, संग प्रदान किया। किसका संग दिया? शिला प्रभुपाद भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने शुद्ध भक्त जब किसी व्यक्ति को संग प्रदान करता है तो किस प्रकार से उनके जीवन में चेंज आया आप देखिए। ऐसे लोग जो कि एडिक्शन से बाहर नहीं आना चाहते थे, कृष्ण का नाम जीवन में कभी सुना नहीं, लेकिन वे भक्ति योग को इतना सीरियसली प्रैक्टिस करने लगे कि सुबह 4 बजे उठते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, भगवद गीता पढ़ते ही नहीं थे, जाकर भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे ज्यादा से ज्यादा। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। जिसने कृष्ण का नाम नहीं सुना, भगवद गीता का भी सुना नहीं है, वो भगवद गीता के डिस्ट्रीब्यूशन को कर।
0: बल्कि मेरा अपना एक पर्सनल जो है अनुभव कहिए, ऑब्जर्वेशन कहिए, कि हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ तो गीता हमारे जीवन का एक आधार है, है ना। लेकिन अगर हम विदेश की बात करें तो उनका जुड़ाव तो आप छोड़िए, कि आपने जैसे कहा कि उन्होंने कभी धर्म का नाम ही नहीं सुना था इस प्रकार का, तो उनका जो भक्ति भाव हम देखते हैं वो हमें बहुत इम्प्रेस करता है कि कैसे एक इंसान एक डिफरेंट कल्चर से आकर उठकर दूसरे कल्चर में किस तरीके से अपने आप को जो है वो समाहित कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो असर आप बात कर रहे हैं, ये कैसे होता है, किस प्रकार से ये हम किसी व्यक्ति को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि आप इस भक्ति भाव की तरफ जाएं, आप एडिक्शन से जो है बाहर निकलें, और क्या क्या जरिए हो सकते हैं इसको अपनाने के?
1: सबसे प्रमुख, मैम आपने बहुत अच्छा ये भी प्रश्न किया है, सबसे प्रमुख चीज जो व्यक्ति को जानना चाहिए, अपनी सही पहचान को।
0: जी।
1: हमारी सही पहचान का अर्थ है कि क्या जो मैं रोज सुबह ब्रश करते हुए आईने में देखता हूँ,
0: हाँ,
1: क्या मैं यही हूँ? कहने का तात्पर्य ये है,
0: यानी हमारा क्या शरीर ये हमारा ही है या हम ही शरीर के ही हैं,
1: या मैं शरीर हूँ भी कि नहीं,
0: हूँ भी कि नहीं।
1: फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की तरह देखिए, अगर ड्राइवर कहे कि मैं ही गाड़ी हूँ,
0: हाँ,
1: तो क्या ये सही होगा?
0: तो
1: ड्राइवर तो गाड़ी नहीं होता,
0: नहीं हो सकता।
1: गाड़ी केवल एक माध्यम है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए।
0: जी।
1: इसी प्रकार से ये शरीर हम नहीं है, क्योंकि ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता हमें बताती है कि आप शरीर नहीं है, आप शरीर को चलाने वाले ड्राइवर अर्थात आत्मा है, और उस आत्मा की पहचान अगर आप सही से कर लेते हैं तो फिर आप केवल इस शरीर को जैसे चलाना चाहें, अपने मन और बुद्धि को जैसे चलाना चाहें इसको चला सकते हैं। मन तब परेशान करता है जब आप सोचते हैं मैं मन हूँ। जब आप मन को बोलेंगे कि तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है, तुम मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ और तुम मेरे मन हो, मैं मन नहीं हूँ, जब मन को स्वयं से अलग कर कर वो व्यक्ति देखने लगता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि आप सही नहीं है, तो उस व्यक्ति को ये प्रश्न पूछना चाहिए, सही क्या नहीं है? आप शरीर की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, या बुद्धि की बात कर रहे हैं? कि आत्मा तो हमेशा सही है,
0: सही है बिल्कुल।
1: तो जब पता चला कि प्रॉब्लम तो मन में थी, मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उस पे काम करते हैं। लेकिन वो मन मैं ही मान लूंगा ना, तो मेरा अहंकार इसे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे मानने नहीं देगा, और मेरा अहंकार मुझसे कहेगा अरे मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। और यहाँ हम सुधार करने के लिए तैयार नहीं, कितना ही बुरा एडिक्शन हो हमारे जीवन में, लेकिन वो सुधारा जा सकता है अगर हम एक्सेप्ट करें कि वो प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, हमसे जुड़े एक एलिमेंट में, तत्व में है। गाड़ी में प्रॉब्लम है उसको सुधार सकते हैं, ड्राइवर में प्रॉब्लम है तो मुश्किल हो गया ना। इसलिए मन को अपने से अलग कर देख कर और फिर उस पर कार्य करें, बड़ा आसान हो जाता है।
0: तो ये जो आप कह रहे हैं कि शुरुआत करें अपने मन पे काम करने की, उस मन पे काम करने के लिए पहला स्टेप क्या हो सकता है?
1: मन को क्या अच्छा लगता है वो करिए। कितना आसान हो गया ना,
0: जो मन करे, जहाँ मन जाए, क्योंकि मन तो एक चंचल है। अक्सर हम कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, ये शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इनका मन के लिए, तो उस चंचला को भी तो नियंत्रित करना जरूरी होता है।
1: आप अगर स्प्रिंग को दबाएंगे, एक साल तक दबाए रखेंगे, तब भी वो उछल के रिएक्ट करेगा। मन भी बेचारा ऐसा ही है, उसमें इसकी क्या गलती, उसकी प्रकृति ऐसी। मन में तीन चीजें होती है, थिंकिंग अर्थात सोचता है, फीलिंग अर्थात कुछ महसूस करता है, और इंटेंशनैलिटी यानी कि कुछ करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। अब ऐसे में जो दूसरा मैंने पार्ट, मन के अंदर फीलिंग्स होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ महसूस करना चाहता है, जहाँ उसको अच्छा लगता है वो करता है ना। तो अगर हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, देखिए दो चीजें मन एंजॉय करता है, एक तो या तो आध्यात्म में बढ़कर अपने आप को कंट्रोल कर लेगा
0: जी,
1: या फिर यू नो भौतिक विषयों में, एडिक्शन में कहीं ना कहीं
0: फंस जाएगा। और भौतिक भी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एडिक्शन जो कहते हैं कि हर व्यक्ति एडिक्टेड है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अल्कोहल एक एडिक्शन है या ड्रग्स एक एडिक्शन है। मुझे कई बार लगता है कि चाय भी एक एडिक्शन है, जो हम मेरे जैसे भारतीयों को बहुत विचलित करती है। बार बार किसी से बात करने की इच्छा होना, मन को खाली करना, वो भी एक एडिक्शन है। कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी बहुत फैलाते हैं अपने आसपास, वो भी एक एडिक्शन है कि उनको उस तरह की बातें करने की आदत हो गई है। तो ये जो एडिक्शन है, जो खास तौर पे हम जिस पे बात कर रहे हैं, तो भक्ति मार्ग में उससे निकलने का क्या तरीका बताया गया? उस मन को नियंत्रित तो नहीं करने की बात कहूंगी मैं अब, क्योंकि आपने कहा जितना नियंत्रित करेंगे वो उतना बेकाबू होता चला जाएगा, तो उसको सही मार्ग पर लेकर आने का क्या तरीका हो सकता है?
1: वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। अब अगर दूसरे स्टेप पे आगे बढ़े, कंट्रोल मत करिए, फोर्स मत करिए मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं ना।
0: हाँ।
1: तो हम लाइफ में अगर एनवायरनमेंट ऐसा रखे, जैसे कि सुबह जल्दी उठना,
0: हाँ,
1: सुबह वॉक पे जाना,
0: हाँ,
1: सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करना, अच्छा क्वालिटी का भोजन लेना,
0: हाँ,
1: केवल जिह्वा की तृप्ति के लिए रोज पिज्जा बर्गर नहीं खाना, तो कहने का तात्पर्य अगर अच्छी आदतों में भी मन को अच्छा लगने लगे तो करने लगेगा। तो मन को ये कन्विंस करना और उस ज्ञान के स्तर पर लाना कि अच्छी चीजें अच्छी,
0: तो यानी मन को भी हमें कन्विंस करना होगा, बच्चे की तरह समझाना होगा उसको कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये बुरा है,
1: उसके इमोशंस में अच्छी चीजों को भरना है।
0: हाँ।
1: जैसे कि जब टंकी में,
0: हाँ,
1: पानी गंदा होता है,
0: हाँ, हाँ,
1: हाँ, तो हम टंकी पूरी इतनी बड़ी टैंकर साफ करने तो नहीं जाते। हम क्या करते हैं,
0: फिल्टर लगा देते हैं।
1: हाँ। फिल्टर भी लगाते हैं और एक और चीज करते हैं, ऊपर
0: हाँ।
1: से साफ पानी चालू करते हैं,
0: हाँ,
1: और नीचे से गंदे पानी को निकलने का रास्ता छोड़ देते हैं। हाँ। जैसे ही गंदा पानी निकलता जाता है, पानी साफ हो जाता है। कहने का तात्पर्य, अच्छे विचारों को, सात्विक विचारों को मन में आने दें, भगवद गीता के उत्तम विचारों को मन में आते रहने दें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन में जगह तो उतनी है ना। जैसे अच्छे विचार रहेंगे, जो पुराने विचार हैं, दुखी विचार हैं, धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे। कुछ समय में आप देखेंगे मन में अच्छे विचार ज्यादा हैं और स्वयं अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं।
0: अक्सर कहा जाता है कि मेरा मन नहीं लगता है ना, और जैसे हमारे बॉलीवुड ने मन को बड़ा रोमांटिसाइज भी कर दिया है कि मेरा मन तुम्हारे बगैर नहीं लगता है, या मन जो है वो अकेले खुशी नहीं देता है, किसी और के साथ खुशी नहीं देता है। तो मन लगाने का क्या तरीका है भक्ति मार्ग में, मन को हम कैसे लगाते हैं और किस प्रकार से जो है वो, जैसे आप एक तरीका आपने सुझाया कि सुबह समय से उठें और मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करने के क्या तरीके हो सकते हैं, ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
1: इसमें दो प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ, पहला ये कि मन को कैसे हम अध्यात्म में लगा सकते हैं
0: जी,
1: और बॉलीवुड ने जिस प्रकार से,
0: हाँ,
1: मन को या दिल को,
0: हाँ,
1: जिस प्रकार से रोमांटिसाइज किया है,
0: हाँ,
1: उसी को यूज कर लेते हैं। जब किसी से प्रेम होता है, यू
0: हाँ।
1: नो you know, आप देखिए बॉलीवुड में भी, हाँ, या हॉलीवुड में भी,
0: हाँ,
1: लव जो होता है, प्रेम होता है
0: जी,
1: वो वन साइडेड होता है, एक तरफा होता है। कहने का तात्पर्य है,
0: हाँ,
1: कि उसे एक तरफा ही रखे ना, बट प्रॉब्लम,
0: लेकिन क्या एक तरफा जो प्रेम है, क्या वो पूर्ण प्रेम कहा जा सकता है, क्या वो फुल सर्कल है?
1: यस, वही पूर्ण है। यही मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि एक तरफा लव ही, प्रेम ही जो है पूर्ण है,
0: हाँ,
1: जब दो तरफा से हो जाता है तो उसमें स्वार्थ जुड़ जाता है, मैं कुछ आपके लिए करता हूँ, आप मुझे बदले में कुछ देंगे, ये तो बिजनेस हो गया,
0: ये बिजनेस हो गया।
1: प्रेम तो केवल एक तरफा ही होता है,
0: यानी अपेक्षा रखना जो है वो बिजनेस है।
1: एग्जैक्टली, अभी हम भक्ति योग में यही करते हैं, कि भगवान से कहते हैं, एक संस्कृत में चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है
0: जी।
1: उसकी छोटी सी पंक्ति ऐसी है
0: जी।
1: यथा तथा वा विदधा तु लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः। व्हाट डज द चैतन्य महाप्रभु सेज, महाप्रभु सेज कि देखिए भगवान, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मैं आपकी प्रेम से सेवा कर रहा हूँ, आप मेरे साथ कुछ भी करिए,
0: समर्पण,
1: आप कुछ भी करिए मेरे
0: जी,
1: साथ
0: जी,
1: कितने
0: जी।
1: ही बुरे दिन दिखाइए, लेकिन ये मेरी परीक्षा है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप ही मेरे प्राणनाथ
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी।
1: जब हम ऐसा कर देंगे तो स्वार्थ से हम बाहर निकलने के लिए अपने आप को खोल देते हैं,
0: खोल देते हैं, यानी प्रभु को समर्पित कर दें हम स्वयं को।
1: एक जगह प्रेम है और दूसरी तरफ काम है। बॉलीवुड में काम को प्रेम की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में होता है वो इन दोनों को अलग अलग करके देख पाता है और वो शुद्ध प्रेम से बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में लगा रहता है, उससे जो आनंद आता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर कामवश व्यक्ति किसी प्रेम में फंसा है, काम में फंसा है, तो थोड़े दिन के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए हम जब काम की भावना से किसी रिलेशनशिप में या मैरिज में या किसी भी रिलेशनशिप में जब घुसते हैं
0: जी,
1: तो उस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आता है,
0: इट डजंट लास्ट लॉन्ग।
1: यस, और जब निस्वार्थ सेवा में जाइए उस रिलेशनशिप में, वो पूरे जीवन आपके साथ।
0: तो ऐसा कोई मार्ग, जैसे अक्सर हमने सुना है कि आपने कहा दो तरीके हो सकते हैं मन को जो है वो सही रास्ते पे लगाने के, एक मेडिटेशन हो सकता है, अगर हम करें तो मन नियंत्रित रहेगा, दूसरा तरीका भक्ति मार्ग भी हो सकता है। तो क्या ये दो अलग अलग तरीके हैं, और हैं तो किस प्रकार से ये हमारे शरीर और मन पे काम करते हैं?
1: ओके, तो इसमें हम क्विकली अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भक्ति क्या अलग से करनी पड़ती है या हमारे अंदर है
0: जी।
1: सो अगर शॉर्ट में बोले तो एक बच्चा माँ से बच्चे का क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता है ये माँ और बच्चे का?
0: एक जुड़ाव है, एक ममता। हाँ,
1: ममता, ममता में प्रेम है
0: जी जी।
1: तो ये प्रेम का बच्चे का और माँ का जो रिश्ता है
0: जी जी,
1: इसमें जब माँ को बच्चे से प्रेम होता है तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर बच्चे को सर्व करती है
0: जी जी।
1: एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा उसके पंख
0: निकल
1: जाते हैं, निकल जाते हैं और वो उड़ना चाहता है।
0: माँ
1: कहती है बेटा कोई बात नहीं, जा तू उड़ और अपने जीवन में यू नो सक्सेस को, सफलता को प्राप्त कर,
0: को प्राप्त कर।
1: वो रोती है, अंदर ही अंदर रोती है, लेकिन वो निस्वार्थ होती है, ये माँ का प्रेम
0: बांधता नहीं है। यानी प्रेम कभी बांधता नहीं है हमें किसी रिश्ते में या फिर
1: दूसरे रिश्ते के बारे में सोचता है कि ये कितना अच्छा करेगा इस प्रेम में। अपने स्वार्थ से बाहर निकल के व्यक्ति
0: निकल के सोच पाता है,
1: और यही भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है और हम भगवान का अंश हैं
0: जी, जी।
1: जैसे कि शरीर से माँ ने हमें जन्म दिया है, वैसी आत्मा रूप में इस आत्मा को भगवान ने जन्म दिया है
0: जी,
1: भगवान
0: जी।
1: का अंश है ये आत्मा। तो उस एंगल से हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता हुआ? प्रेम का
0: रिश्ता।
1: और प्रेम का रिश्ता है तो क्या करेंगे? हम उनकी सेवा करेंगे।
0: सेवा।
1: शरीर समाप्त हो जाएगा एक दिन, लेकिन आत्मा हमेशा अमर है,
0: साथ में रहेगी। बिल्कुल,
1: हमारा इटर्नल शाश्वत रिश्ता है भगवान से प्रेम का। और यही अगर हम प्रेम भगवान से करते हैं तो भक्ति हमारे जीवन का अंश है, अलग से नहीं करनी है
0: जी जी। और ये जो मार्ग है इस पे चलने में परिवार का, हमारे आसपास के घर का माहौल का कितना असर पड़ता है?
1: जैसे हमने कहा कि शरीर जो है बदलता रहता है, आत्मा का पिछले जन्म में तो कोई घर था। अगर उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है
0: जी
1: भक्तियों को, इस जन्म में आकर उसको अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता तब भी वो फेवरेबल एनवायरनमेंट बना लेता है या उस फेवरेबल एनवायरनमेंट में चला जाता है। ये नेचुरल है हमारे साथ। अगर मुझे क्रिकेट खेलने की इच्छा तो अपने आप क्रिकेट के ग्राउंड में मिलूंगा मैं आपको। वैसे जिसका भक्ति योग, जिसने पहले भी पिछले जन्मों से भक्ति करी, अभी पूर्ण नहीं हुई, पूर्ण करने के लिए वो अगले जन्म में भी वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के पहुंच जाएगा।
0: यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है कि शायद इनसे पहली बार नहीं मिले, मिलते ही जैसे आज आपसे मुझे मिलके ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहले भी मिली हूँ। तो ये एक हमारा रिश्ता होता है जो हम कभी पहले किसी और जन्म की जब हम बात करते हैं, या आप कहिए कि लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, लाइक माइंडेड जो पीपल होते हैं, तो उनका मन को एक दूसरे को आप पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि आप जो बात करें वो मेरी समझ में आ रही है और जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो आप उस भाव को समझ पा रहे हैं। तो ये रिश्ता बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग पे चलने के लिए। मैं जीव गोपाल दास जी एक ऐसी समस्या की बात करूंगी कि जो हमारा जो युवा वर्ग है खास तौर पर, वो बहुत जूझ रहा है समस्या से, और ये समस्या ऐसी है कि मुझे लगता है कि जिसमें शायद उनकी ज्यादा गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, उनको पोस्ट करना होता है, लाइक करना होता है, दोस्तों ने लाइक नहीं किया, या फिर रात भर जो है गेम खेलते हैं सुबह, पेरेंट्स जो है वो शिकायत करते हैं कि सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, स्कूल में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, एग्जाम्स के समय पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें हैं उनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। तो क्या भक्ति मार्ग में ऐसा कोई रास्ता है जिसके द्वारा जो है वो अपने इस तनाव से बाहर निकल सकते हैं?
1: यस, अभी हमने जैसे चर्चा किया कि भक्ति करनी नहीं होती,
0: हो जाती है,
1: हमारे अंदर होती है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए

0: जी,
1: और ये प्रोग्राम बड़ा सुंदर है।
0: जी हाँ, और मैं खास तौर पे इस प्रोग्राम पे अभी आने ही वाली थी, क्योंकि इसके बारे में भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि किस रंग में ये प्रोग्राम आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे छात्रों को, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है, और कुछ ऐसे उदाहरण अगर आंखों के सामने आप देख पाते हैं, कोई ऐसे एग्जांपल कि बच्चों के जीवन में कोई बदलाव आ रहा है इससे, तो वो मैं जानना चाहूंगी।
1: राइट मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सो नेचुरली हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड होती हैं। जैसे कि जैसे ही हमने यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को शुरू किया, हम शुरू में कीर्तन करते हैं विद म्यूजिक एंड डांस, तो उसके साथ साथ म्यूजिक डांस के साथ जब हम इस कीर्तन को करते हैं, तो अपने आप ही नेचुरली कुछ स्टूडेंट जिनको म्यूजिक अच्छा लगता है, जिनको डांस अच्छा लगता है, स्वयं अपने आगे आ गए, उन्होंने कहा हम भी कीर्तन करना चाहें। सो उनके अंदर वो उनका नेचर था, हमने उनको एक चैनलाइज किया।
0: जी जी,
1: ऐसे कुछ स्टूडेंट्स आए बोले कि सर हम इंजीनियरिंग में हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जो मैंने किया, मैंने इस प्रोफेशन से सीखा और मैं अभी उसी टैलेंट को सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। हमारे आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस को भी जो है टेक्नोलॉजी में का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, अर्थात ये टेक्नोलॉजी जो हमें दे सकती है वो हमें भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन बच्चों ने कहा यस सर हम भी करना चाहेंगे, आप आइए इंटर्नशिप करिए हमारे साथ में और अच्छे से एक्सपोजर लीजिए। बच्चे बिल्कुल खुश हो गए, बोलते हैं यस सर हम करना चाहेंगे। उन्होंने अपना डिटेल्स दिया कि भाई आप ये रहा हमारा सीवी, आप तो प्लीज इसको परस्यू करिए। कुछ स्टूडेंट्स आए बोले सर मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा आप क्या कर सकते हैं ये आप सोचिए, आपका नेचर क्या, आपकी प्रकृति क्या है, और आप भगवद्गीता में बताती कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, अर्जुन के अंदर तीर चलाने का टैलेंट था उसको भगवान की सेवा में लगाया, वैसी आपके अंदर जो भी टैलेंट है अगर उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे तो वो आपके बंधन का, इस संसार में बंधन का कारण बन सकता है। अगर पूर्ण रूप से मुक्त होना है तो जो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। इसलिए स्टूडेंट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये म्यूजिकल अवेकनिंग का जो प्रोग्राम है एवरी ट्यूजडे इवनिंग 4 PM शारदा यूनिवर्सिटी के टेम्पल में हॉल में होता है, और वो आकर जरूर अटेंड करें। वहाँ आप अपने टैलेंट को फ्रीली कैसे आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। मंदिर केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है, मंदिर वो है जो आपके अंदर के नेचर को बाहर निकाल कर लाए, ताकि आप अंदर और बाहर दोनों तरफ सफाई से देख सके। ये हम प्रयास,
0: सो अध्यात्म हमें वो क्लैरिटी देता है कि हम अंदर और बाहर अच्छे से देख पाते हैं, डिफरेंस समझ पाते हैं।
1: हाँ, आप देखिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसका टैलेंट जो था वो तीर चलाने में था, और भगवान ने उससे कहा तुम्हारा टैलेंट है तीर चलाने का, तो उसे ही भगवान की सेवा में लगाओ, अलग से जाकर कहीं योग और ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है।
0: जी,
1: यही भक्ति योग,
0: यानी अगर हम अपने कर्म पे ध्यान दें, जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, कर्म करते जाएं और भक्ति भाव से अपने कर्म को प्रभु को समर्पित करते हैं, तो ये जो समर्पण की जो भावना अगर हमारे अंदर रहेगी तो ये स्वयं ही हमें भक्ति मार्ग पे ले जाएगी।
1: जी,
0: और जो तनाव, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी जो हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम स्वयं ही इससे बाहर निकल पाएंगे।
1: यस मैम, बहुत सुंदर कहा। इसमें छोटी सी बात मैं जोड़ूंगा
0: जी
1: कि हमें किसी ना किसी को गुरु तो हम बना ही लेते हैं, या तो भगवत गीता को अपना गुरु बना लें या मन को गुरु बना, मन को बनाएंगे तो वो क्या करवा रहा है ये तो हमने देख लिया। एक बार भगवत गीता को गुरु बना के देखिए
0: तो जो गुरु की जो एक कंसेप्ट हमारे धर्म में मौजूद है, हमारे पुराणों में मौजूद है, तो वो गुरु ही हमें जो है आगे लेके जाते हैं, हमारे सूत्रधार बनते हैं जीवन के।
1: यस, भगवत गीता 4th चैप्टर में भगवान इसको कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनाम् तत्वदर्शिना। जिसने तत्व को देखा है वो आपको तत्व के बारे में बता सकता
0: है।
1: आपने बस 3 चीजें करनी है, जाके समर्पित करना है, दूसरा प्रश्न पूछना है, तीसरा थोड़ी सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव, और इसी की प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं।
0: बहुत सुंदर। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जितना आनंद मुझे, जैसे आनंद की अनुभूति मुझे हुई है इस कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए, आप सबके बीच लेके आते हुए, उतनी आनंद की अनुभूति आपको सुनने में भी ज़रूर प्राप्त हुई होगी। तो अभी है हमारे साथ में जीव गोपाल दास जी, जो कि अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं और गीता दर्शन के लिए और इस्कॉन के प्रचार प्रसार के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने समय निकाला और हमें, हमारे छात्रों के साथ में, हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय के साथ में सुनो शारदा 90.8 FM पे हमारे बीच में ये कुछ अपने विचार साझा किए। आपका

0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते रहेंगे दोबारा से, फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से आपके विचारों को हम सुनो शारदा पे दोबारा से जो है प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद
1: इस प्लेटफॉर्म पर गीता के विचारों को व्यक्त करने का जो आपने मौका दिया, बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें, अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल बिंदास बातें। बहुत कुछ खास होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है कि जब मैं बिंदास बोल बिंदास बातें करता हूं या जिक्र करता हूं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक खास मेहमान को मैं आमंत्रित कर रहा होता हूं इस कार्यक्रम में, और उनसे जुड़ी हुई बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। निश्चित तौर पर जब बातें होंगी तो कहीं ना कहीं म्यूजिक भी होगा, लेकिन जब आपको ये पता चले कि हरफन मौला हमारे साथ कोई शख्स जुड़ रहे हैं, तो वाकई प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। जी हाँ, पढ़ने पढ़ाने की भी बातें होंगी, लेकिन जिंदगी को कैसे जिया जाए ये बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। म्यूजिक की बातें होंगी और मिमिक्री की बातें होंगी और सिंगिंग की बातें होंगी। तो इस तरीके से यूं कहें कि एक पैकेज है हमारे सामने हमारी शख्सियत। मैं ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: कैसा लग रहा है सर शारदा के इस प्रांगण में आकर आपको?
1: जी मुझे बेहद खुशी है, और आपका जो अंदाजे बयां है वो बेहद मुतासिर करने वाला है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपसे इस मुद्दे पे बातचीत करने का एक मौका शारदा रेडियो के अंदर मिल रहा है।
0: थैंक यू सर, ये मेरी खुशनसीबी है कि आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ कुछ मिमिक्री की जब बातें होती हैं, गीत संगीत की बातें होती है, तो ऐसा लगता है कि कोई अपनी सी बात होने वाली है, मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। तो सर, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप मुझे प्लीज अपने बारे में बताएं कि किस शहर से आप ताल्लुक रखते हैं और यहाँ कैसे आना हुआ?
1: जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ है, जो भगवान बुद्ध की नगरी कही जाती है। भगवान बुद्ध को वहाँ पर निर्वाण मिला हुआ है। आज भी महात्मा बुद्ध वहाँ लेटे हुए हैं, और दुनिया भर के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग वहाँ आते रहते हैं। हाल ही में वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना है
0: जी।
1: और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस धरती से जुड़ा हुआ हूँ। वहां से फिर पढ़ने पढ़ाने का तरीका जो आपने कहा कि उसको देखते हुए मुझे शहर दर शहर भटकना पड़ा, और लेकिन मुझे शहर अच्छा मिले, जगह अच्छी मिली। वहां से फिर मैं बनारस गया और गोरखपुर होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और वहां से पीएचडी तक की जो मेरी शिक्षा हुई है मास कम्युनिकेशन में वो पूरी हुई। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बनारस वैसे भी कहते हैं कि शहर एक अलहदा किस्म का है, तो बहुत सारी चीजें मैंने वहाँ कोशिश की सीखने की, जिसमें से म्यूजिक भी एक है और बहुत और भी बातें हैं।
0: जैसे कि आप हमें बता भी रहे थे, और मैंने अभी आपका एक गाना भी सुना, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने गाया है, गुनगुनाया है, उसके बारे में भी बातें करेंगे जरूर। तो इस क्षेत्र में आप मुझे बताएं कि ये जो स्टडी का क्षेत्र है, अध्ययन का क्षेत्र है, पठन पाठन का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं?
1: पिछले 15 वर्ष से मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन संस्थान और कुछ और अन्य संस्थानों में पहले जुड़ा रहा हूँ, और अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। और मीडिया के विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने का, मैं पढ़ना ही कहूँगा, पढ़ाना तो मुझे लगता है कि बड़ी चीज़ है जो हमारे गुरुओं को आती थी।
0: अरे क्या,
1: हम कोशिश बस ये करते हैं कि कुछ कर सकें। वैसे भी मेरा ये अपना मानना है कि एजुकेशन का जो पर्पज है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट, नॉट टू इम्पोज ओन थॉट ऑन अदर्स। तो ये सीखना हर एक से हो सकता है। और ऋग्वेद की एक बहुत अच्छी सूक्ति है, ये अनुभद्रा कृतो यन्तु विश्वतः, लेट अस नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरीवेयर, और वी हैव बीन वेलकमिंग ऑल गुड थॉट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई इंडिया इज स्टिल सर्वाइविंग एंड इन अ विन विन सिचुएशन अक्रॉस द वर्ल्ड।
0: नाइस। चलिए सर, आपसे बातचीत का जो सिलसिला है वाकई बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक मैं लेना चाह रहा हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ, ये छोटी सी आपसे एक इल्तजा करूंगा कि अगर आपके अंदाज में कोई गाना हो जाए, क्योंकि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, सिंगर्स की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो उसी अंदाज में हम ब्रेक पर जाना चाहेंगे।
2: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा
0: चला गया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना। देवानंद साहब पर ये गाना फिल्माया गया है। सिंगर आई थिंक रफी साहब है या?
1: जी रफी साहब।
0: रफी साहब, क्या बात है, मैं भी सही पकड़ा हूं। तो लिसनर्स, इस गाने को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। सच बात तो ये है कि जिंदगी में जितनी भी दिक्कत परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों का अच्छी तरीके से सामना करिए, और जब हम अच्छी तरीके से सामना करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके जो परिणाम है वो सुखद होते हैं। एक ब्यूटीफुल ट्रैक, वो ब्यूटीफुल सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, जो हैं डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, एसोसिएट प्रोफेसर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली से। सो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चूंकि जिस फील्ड से आप आते हैं, ये जानना समझना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है कि जब आप पढ़ाई करते थे, आज आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो एक अलग बात है। आपने बहुत सादगी से अपनी बात रखी कि हम खुद सीख रहे हैं, सीखते समझते इंसान आगे बढ़ता है। कैसा लगता है कि कितना फासला आ गया है, कितना अंतर महसूस आप करते हैं उस समय की पढ़ाई में, आज की पढ़ाई में, या जो एक अदब का माहौल होता है, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, उसमें कितना अंतर महसूस करते हैं? दो बार
1: देखिए, फर्क तो जरूर है और हर दौर में होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और आज भी मुझे लगता है कि जो अच्छाइयां हैं वो मौजूद हैं और बुराइयां भी रहती हैं। गुड एंड एविल्स आर एवरीवेयर, इवन विद इन अस, वी विल हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज। और स्टूडेंट के तौर पे, शिष्य के रूप में जो मेरे सामने आता है, मैं उसको वैसे स्वीकार करता हूँ जो मेरे पास आ गया। वो रावण राम सब मेरे हैं और उनका ख्याल करना मेरा काम है। और जहां तक सीखने का बात है, तो रामानाथ अवस्थी की पंक्तियां हैं कि कौन यहाँ पर किसे पूछता, दुनिया है यानी जानी, पानी ढूंढ रहा प्यासे को, प्यासा ढूंढ रहा पानी।
0: क्या बात,
1: इफ यू हैव वर्दीनेस दैट विल रिफ्लेक्ट। तो पानी ढूंढ रहा प्यासे को, प्यासा ढूंढ रहा पानी, पानी है तो बरसेगा ही।
0: क्या
1: पानी है तो बरसेगा ही, आंख में हो या बादल में, चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या आंचल में।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: बहुत, जिस बच्चे को जो करना है वो कर ही लेता है। और आई कैन प्राउडली से दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर शाइनिंग इन मीडिया इंडस्ट्री, माय ओन स्टूडेंट्स, सो मेकिंग अस प्राउड।
0: वाकई खुशी होती है
1: जी।
0: उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक पक्ष आपने हमारे सामने रख दिया, जो लोग आते तो हैं चकाचौंध को देखकर, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो कर गए, जिनका हम नाम ले लेते हैं, उंगली पर हम नाम गिना सकते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में हम क्या कहें जो अदब नहीं है, सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। आपको सुख सुविधाएं मिली हुई हैं सीखने के लिए, आपके पास एक रेडियो एफएम है या एक कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, उनको लगता है कि नहीं, छोटा स्टेशन है, बड़े स्टेशन से जाकर मुझे अपनी इंटर्नशिप करनी है, तो वो जो सोच है, उस सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उसके बारे में सर, अगेन मैं आपको एक छोटी सी पंक्ति दूंगा जिसमें सब कुछ है। अश्विनी कुमार अशरफ की पंक्ति है कि शक्लें क्या तू गढ़ने चला है, हुस्न नजर पहले पैदा कर। शक्लें क्या तू गढ़ने चला है, हुस्न नजर पहले पैदा कर, सोच से ढलती है शख्सियत, छोटी बातें मत सोचा कर।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सो लिसनर्स, मुझे लगता है कि इस बात का सार अगर आपने जान लिया, समझ लिया, जो सोच है, जिस सोच के साथ आप चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कोई रोकेगा नहीं और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। तो आप प्रयास करिए, सीखिए, समझिए, और जब आप सीखेंगे, समझेंगे, तो निश्चित तौर पर हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, आपके गुरुजन भी आपका नाम लेना चाहेंगे कि वो फला स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया था, आज वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आज उसे लोग मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। चलिए, ये तो पढ़ने पढ़ाने की बात रही, तो सर कोई एक और गाना, क्योंकि आपके पास मिमिक्री का बहुत अथा भंडार है और आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो कोई और दूसरे सिंगर जिनको आप यहाँ लेकर आना चाहेंगे और उनको हम गाने की तरफ लेकर
1: देखिए, मेरा जो रुझान है वो पुराने गानों में बहुत रहा है। और
0: बड़े अच्छे
1: एस डी बर्मन साहब, सचिन दा को मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनका एक गाना मैं मिमिक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: प्लीज प्लीज
1: मन

मुझे आज की विदा का मर कर भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार ले चल पा।

0: मांझी।
1: बहुत खूबसूरत, तालियां बनती है सर, तालियां बनती है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने उनको कॉपी किया। और जब इस तरीके से गानों को जब हम सुनते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, उन गानों में हम खो जाते हैं, वो मांझी, वो गाने के शब्द, वो संगीत आजकल कहीं ना कहीं खो गया है। फिलहाल इस गाने में हम खोने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस गाने को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। सो इस ब्यूटीफुल ट्रैक को आप सुनिए सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन, मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और सबसे खास बात यह है कि इस दुनिया को अपने आसपास रखते हैं। जब आप म्यूजिक को रखते हैं अपने आसपास, म्यूजिक को जीने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इंसान हमेशा खुश रहेगा ही रहेगा और दूसरों को खुश रखेगा। अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था सर से बात कर। जब हम ऑन एयर बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब आप खुद जज करिए कि कितना अच्छा साक्षात्कार हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। फिलहाल एक ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने की बातें करते हैं, और सच बात तो यह है कि जिंदगी को जब आप जीते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती ही नहीं है। ये सच है कि जिंदगी में तमाम दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन एक म्यूजिक की वजह से, खुश मिजाजी की वजह से आप जिंदगी को आगे लेकर जा सकते हैं। कहते हैं ना कि टेंशन बहुत ज्यादा है, हर कोई परेशान है, लेकिन जब आप आत्मबल आपका मजबूत है, सोच आपकी मजबूत है, उड़ान बहुत अच्छी है, तो उसके जो परिणाम है, ये सच है कि सुखद परिणाम आते हैं और कोई भी बीमारी आपको लगती ही नहीं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो सर, ये जो खुश मिजाजी का यूं कहूं कि गुरु मंत्र है आपके पास, आप कैसे खुश रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, तो कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि सर एक गाना गाइए ना, गुनगुनाइए ना, या स्टेज परफॉर्मेंस होने वाली है, अरे पाठक सर को बुलाओ ना, उनकी परफॉर्मेंस हम यहाँ करवाएंगे, कैसा फील होता है उस वक्त?
1: ये अक्सर होता है, और मैं क्या, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा प्रिविलेज महसूस करता है, और अच्छा तब लगता है कि जब सच में लोग उसको पसंद करें और आपको कहीं ना कहीं से तारीफ मिलना, सबको अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि गाना कुछ ऐसा हो कि हमारे जो आज की पीढ़ी के लोग हैं उनको कुछ मैसेज मिले, कुछ मीनिंग हो उसमें, कुछ जीवन हो, क्योंकि जिंदगी के जो सारे रूप हैं वो भारतीय संगीत में मिल जाते हैं। खासतौर से पुराने गानों का जिक्र करें तो उनके लिटरेचर में बड़े मीनिंग हैं, बड़े मायने हैं।
0: सही कर।
1: तो मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ मीनिंग उसमें से अपने लोगों के साथ बांटा जा सके।
0: नाइस। बहुत कठिन काम है किसी को कॉपी करना, क्योंकि मैं भी मिमिक्री करता रहता हूं और गले पे बहुत जोर पड़ता है। एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता किसी सिंगर को। जब आप कॉपी कर रहे हैं तो उनके गाने को हम सुनते हैं, रियाज में उस चीज को हम लेकर आते हैं। चीजें बहुत खूबसूरत तब हो जाती हैं जब आप पेशे से सिंगर हैं, जैसे कि आपने हमें खुद बताया, उस लय को आप पकड़ पा रहे हैं, उस फील के साथ आप गा पा रहे हैं। तो कितना कठिन है किसी को कॉपी करना, मिमिक्री करना?
1: देखिए, पहले तो आपको बेसिक संगीत आना चाहिए अगर आप गाने को कॉपी कर रहे हैं तो।
0: गाने को कर रहे हैं,
1: और बेसिक संगीत तो क्लासिकल ही है। और जब आप क्लासिकल जानते हैं तो आप जो भी गा रहे हैं वो सुर होता है। वो बिना सीखा जब व्यक्ति गा रहा होता है तो वो शब्द गाता है, और शब्द सुर नहीं बन पाते, सुरों में शब्द जा सकते हैं।
0: क्या बात?
1: तो ये एक अलग चीज है। दूसरा, उस व्यक्ति या उस कलाकार को आत्मसात करने का प्रयास होता है, तो उसके प्रति आपकी जितनी श्रद्धा है और आपका प्रयास है, वो आवाज के रूप में बाहर आता है।
0: क्या बात है, यानी कि एक बहुत बड़ी साधना है। जब आप इस साधना को करते हैं तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होता है, बेहतर हो पाता है, तभी आप किसी को।
1: अब किशोरदा को आपको गाना है तो आपको किशोरदा बनना पड़ेगा।
0: बनना पड़ेगा। तो चलिए, जब आपने यहाँ किशोरदा का जिक्र कर दिया है, तो किशोरदा का कोई गाना।
2: हाँ चल के तुझे मैं ले के चलू एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का सवेरा लाए। लगती हो भली, हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले।
1: और वो गगन आप है गगन जी।
0: क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो, थैंक यू सो मच। वाकई बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात कर, और मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। और बहुत कम समय में बहुत कुछ हमने यहाँ जीने की कोशिश की। आपके उस दौर में मैं चला गया, म्यूजिक की बातें हुई, मिमिक्री की बातें हुई, और फाइनली मैं आपसे एक संदेश जरूर जानना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। यूं कहें कि वो गुरु मंत्र क्या हुआ कि किस तरीके से इंडस्ट्री में अपने आप को टिका कर रखे, अपने सपनों को हम साकार कर सकें।
1: दो तीन बातें हैं, मैं वापस पोएटिक फॉर्म में ही कहूंगा, जिसको मेरी आदत है, फितरत है, कि मेहनत कर, कदम बढ़ाकर चल, मंजिल तेरी राह में होगी आज नहीं तो कल।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: और दूसरा, जो आजकल पढ़ने लिखने की आदत छूट गई है बच्चों की, कि जितना ज्यादा पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़, जितना ज्यादा पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़, और जितना ज्यादा लिख सके उतना ज्यादा लिख, फिर आज तू जिनको पढ़ रहा कल उनसे आगे दिख।
0: क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत।
1: और आखिरी मैसेज मैं मीडिया के विद्यार्थियों को स्पेशली देना चाहूंगा कि शब्द का संबल समय की धार देखो, शब्द का संबल समय की धार देखो और अपने हाथ की पतवार देखो।
0: क्या बात,
1: नाव टूटी हो भले हिम्मत न टूटे।
0: आए है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: नाव टूटी हो भले हिम्मत न टूटे, देखना है तो नदी के पार देखो।
0: आए है,
1: देखना है तो नदी के पार देखो।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर मुझे रफली दो लाइनें खुद की ही याद आ जाती है, आपके सामने कुछ नहीं है।
1: जी, बेहद।
0: खुद पर और खुदा पर यकीन कर, मंजिल।

की प्रतिभा के धनी आज हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में। तो ये कार्यक्रम के बारे में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की जरूरत है। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

नमस्कार, मैं श्रुति कीर्ति वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी गौतम बुद्ध नगर। आज मैं सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से जागरूक करने के लिए फाइलेरिया के विषय पर बात कर रही हूँ। फाइलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जिससे क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर यह बीमारी फैलती है। इसके लिए जो है एक पैरासाइट जिम्मेदार होता है, निमेटोड है वो, बेसिकली वाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई, जिसको ये कैरियर के रूप में मच्छर जो क्यूलेक्स काम करता है। और ये संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले तो मैं ये बताऊँगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर ये मच्छर किसी को काटता है तो पहली बात तो ये तुरंत इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, काफ़ी सालों के बाद में, लगभग 4 से 5 साल, कभी इससे भी ज़्यादा लंबा पीरियड लग जाता है, 7 ईयर्स भी कभी कभी देखने में आया है। तो काफ़ी सालों के बाद ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। और हाथी पाँव, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पैरों में सूजन, लिम्फ नोड्स से प्रभावित हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस की तरह इस तरह की बीमारियां देखने में आती हैं। तो हमें करना ये है कि हमें, अगर हम जितना बच सके मच्छरों से बचाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी। जैसे डेंगू और मलेरिया का हम जागरूकता अभियान करते हैं, उसी तरह से हमें फाइलेरिया के लिए भी बचाव के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आजकल मार्केट में कॉयल्स आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि कहीं भी अगर पानी स्टोर है तो अपने घरों के आसपास, अगर आप अपने घर में भी साफ़ सफाई रखते हैं, पानी कहीं भी जमा ना होने दें। ये हमें विशेष रूप से इस तरह की सावधानी लेकर के चलनी है। बेसिकली पाया ये जाता है कि जैसे बारिश स्टार्ट होती है और हमारा मलेरिया विभाग, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी, हमारा पूरा प्रशासन और ख़ास करके हमारा पूरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा होता है सड़कों पर, घरों के आसपास, छत के ऊपर, कई बार कंटेनर्स, खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें बहुत छोटे छोटे जो हमारे स्थान होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो हमें ऐसे पानी को वहां से निकालना है। और अगर ऐसा पानी अगर हम नहीं निकाल सकते हैं तो वहां पे हमें एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाना है। तो नगर निगम, हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन सब चीज़ों पर सक्रिय रहते हैं। मलेरिया विभाग भी लगातार छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था भी करता है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इन जगहों पे हम डीजल और केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जला हुआ मोबिल ऑयल ऑयल और जला हुआ डीजल का भी प्रयोग करके हम लार्वा को रोक सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि चाहे डेंगू का एडीज मच्छर हो, मलेरिया का एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, हमें इनकी ब्रीडिंग ही स्टॉप करके हम बीमारियों के संक्रमण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: राधा।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda।
2: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
3: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
2: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
3: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
0: हाथ होंगे साफ सुमन के पालन के साथ। एस मतलब सीधा, बहते हुए साफ पानी से हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं। पानी से दूर अपनी हथेलियों को रखें।
1: यू मतलब उल्टा, हाथ के बाहर वाले हिस्से पर अच्छे से साबुन लगाएं।
0: एम मतलब मुट्ठी, अपनी उंगलियों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
1: ए मतलब अंगूठा, अंगूठों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
0: एन मतलब नाखून, अपनी हथेली और नाखूनों को रगड़ें।
1: के मतलब कलाई, हाथ के पीछे के हिस्से को रगड़ें।
0: और अंत में बहते हुए साफ पानी से हाथों को धोएं और हवा में हाथों को सुखाएं।
1: तो सुमन के पालन के साथ हाथ हो गए पूरे साफ।
0: एस मतलब सीधा,
1: यू मतलब उल्टा,
0: एम मतलब मुट्ठी,
1: ए मतलब अंगूठा,
0: एन मतलब नाखून,
1: के मतलब
0: कलाई।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
0: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से
0: सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा
1: जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं रणवीर। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाँ बहू, इतनी खांसी?
1: माँ जी, मुझे टीबी है।
0: टीबी और छुपा कर रखा?
1: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दे।
0: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरे। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

मेहरबा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो सिंगर म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय आदित्य रेखाड़ी म्यूजिक रावेटर मेहरबा ओनली ऑन सुरु शारदा 90.8

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाना है, साथ मिलकर टीबी के भय को मिटाना है। हर घर गांव तभी होगा स्वस्थ जब टीबी का रोग होगा ध्वस्त। टेस्ट कराने में ना कोई शर्म ना लाज, क्योंकि टीबी का है इलाज। लक्षण पहचानो, टेस्ट करवाओ, नियमित रूप से ट्रीटमेंट करवाओ। अगर इलाज में होगी लापरवाही तो जान भी ले सकती है ये बीमारी। दोस्तों, वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर 24 मार्च से 31 मार्च तक एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, जहां पर हमारे रेडियो के प्रेजेंटर्स जमीन पर उतरकर अस्पताल जाते हैं और वहां पर टीबी से जुड़ी सारी जानकारियां आपके लिए जुटाते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारी टीम, जिसमें गगन जी और दीपाली जी ने इस बार जेवर के रापूपुरा में जाकर डॉक्टर लेखराज सिंह एंड टीम से टीबी गोल्ड टेस्ट के बारे में बात की है और उसके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से टीबी लोगों के लिए कोई भय और भ्रम का प्रचार प्रसार नहीं है, बल्कि सही टाइम पे जांच और सही टाइम पर अगर उसकी केयर की जाए तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं डॉक्टर लेखराज सिंह और उनकी टीम से हमारी टीम ने क्या बातचीत की।
1: जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहाने सारी मुश्किलें आसान है, और कहा भी जाता है कि प्रथम सुख है निरोगी काया। और यही एक उद्देश्य को लेके सुनो शारदा 90.8 FM स्मार्ट के साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ रहा है। एक मुहिम चल रही है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। अब भारत सरकार की एक मुहिम है, टीबी को हराना है, देश को जिताना है। यही बात हम स्मार्ट के साथ जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि टीबी को हराना है, देश को जिताना है। विश्व का लक्ष्य है कि 2030 तक टीबी मुक्त हमें विश्व करना है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी की सोच यही है, हमें टीबी मुक्त भारत बनाना है। और इसी के अंतर्गत पूरे भारत में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम चल रहे हैं। आज हमारी सुनो शारदा 90.8 FM की टीम में साथ दीपाली जी हैं और SSMFE के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं जेवर में, और यहाँ रबूपुरा एक जगह है और यहाँ एक अस्पताल है। अस्पताल के जो डॉक्टर साहब हैं वो आज हमसे जुड़ रहे हैं, डॉक्टर लेखराज जी। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको समय देने के लिए। जी बताइए
1: सर, आप अपना परिचय दीजिए। मुझे लगता है कि यही है या
2: मेरा नाम यही है बस, डॉक्टर लेखराज सिंह, और मैं यहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हूँ एक साल से।
1: ठीक है सर, टीबी के विषय में हम बात कर रहे हैं, भारत बात कर रहा है इस विषय में, तो टीबी के संबंध में कुछ ऐसा आप मुझे बताएं कि जनरल बातें हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी लगातार अगर हो रही है या कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप अपना चेकअप कराएं, ये बात भी बहुत जरूरी है। तो इन बातों को आधार में रखते हुए कुछ ऐसी बातें जो हमारे श्रोता नहीं जानते वो जानना चाहते हैं।
2: वो बातें यही है कि अगर जैसे हम सब जानते हैं किसी को 2 हफ्ते से खांसी और बुखार है वो तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ में अगर आज के समय में जरूरी है एक टीबी गोल्ड टेस्ट, जो कि बहुत जरूरी है। अगर हम उसको कराते तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा टीबी है, पल्मोनरी है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। बट ये तो हर किसी के साथ आजकल वायरल है, तो उसको भी 2 हफ्ते से खांसी रहेगी, बुखार रहेगी, लेकिन एडिशनल टीबी में जो रहेगा हमें उसका चेस्ट एक्सरे चाहिए या HRCT थोरेक्स उसका हो, तो हम कंफर्म कर सकते हैं, एक डायग्नोसिस बना सकते हैं कि टीबी है या नहीं। और तीसरा, अगर उसका वेट लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली तो बाकी उसके अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज करते हैं फिर पेशेंट को कि हमारा पेशेंट कैसा है, फ्रेश है, न्यू है, या उसने ट्रीटमेंट लेके बीच में छोड़ दिया है अपना डॉट रेजिमेंट, या फ्रेश पेशेंट है या उसका रेजिस्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें हम उसके अकॉर्डिंग फिर कैटेगराइज करते हैं।
1: सर, प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस समय खांसी है, जुकाम है, लोगों को लगता है कि ये आम, तो कभी कभी उस भ्रम में लोग रह जाते हैं कि नहीं मुझे टीबी नहीं,
2: क्या ऐसा होता है, रह जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है कि कंटिन्यूस अगर एक ही रीजन से पेशेंट आ रहे हैं तो हमें वहाँ पे सर्वे कराना है कि उसी कंप्लेंट के अगर पेशेंट आ रहे हैं खांसी के, बुखार के, उसी जगह के, तो फिर हमें उसका सर्वे कराना चाहिए कि क्या कारण है उसी जगह पे। दूसरा, यहाँ पे एक सबसे मुख्य समस्या एक पानी की भी है, इस क्षेत्र का पानी अच्छा नहीं है, तो इस क्षेत्र में उस वजह से भी मौसमी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी टीबी प्रोन एरिया ये पहले रह चुका है, जैसे कि आप हमारे TS बता देंगे, क्योंकि इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी यहाँ पर नहीं है। तो हमारे पास करंटली पेशेंट आते ही रहते हैं टीबी के, जिनका हम डॉट्स प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे, और भी एडिशनल उनके साथ में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व आउट करते हैं, एडिशनल ट्रीटमेंट उनको देते हैं। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया तो हम उसकी ओर अग्रसर हैं और हम अपनी तरफ से पूरी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम किसी तरीके से टीबी मुक्त भारत करें।
1: राजेंद्र जी, आपने फील्ड में काम किया जैसे कि डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं, तो सबसे पहले सुनो शारदा 90.8 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद कि आप हमें समय दे रहे हैं। तो मुझे बताइए कि जब फील्ड में आप जाते हैं किस तरीके का एक्सपीरियंस आपके सामने रहता है, लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं या नहीं आते, अपनी बीमारी को छुपाते हैं, छुपाते हैं तो किस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं?
3: पेशेंट वैसे बढ़ते के आते ही हैं, लेकिन कुछ को पेशेंटों को मोटिवेट भी करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मेन इसमें वजह ये है कि आदमी का थोड़ा अज्ञानतावश रह जाता है और अपनी ये बीमारी छुआछूत की समझते हैं, तो ये एक छोटा कारण है। हालांकि हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं, माया स्पोटम कप एवं टूनेट सुविधा उपलब्ध है, सारे पेशेंटों को स्क्रीनिंग की जाती है। डॉक्टर साहब का हमारे लिए जो MYC हैं उनका सरकार अद्वितीय सहयोग है, तो प्रोग्राम अग्रसर चल रहा है।
1: उन लोगों के बारे में बताइए जिनको भ्रम है, अफवाह एक ये रहती है कि छुआछूत की बीमारी है, तो उस भ्रम को कैसे तोड़ते हैं कि ये एक छुआछूत की बीमारी नहीं है, आप अपना इलाज कराएं, समय से इलाज कराएंगे तो बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं या इस तरीके जब लोग आते हैं तो किस तरीके से उस समस्या से आप लोग उनको निजात दिलाते हैं?
3: सबसे पहले तो क्या है, बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं और जानकारी के बचाव, जानकारी के साथ साथ समय समय पर अगर अंदेशा होता है तो जाँच एवं क्या है चिकित्सक की देखरेख में परामर्श लेना अति आवश्यक है।
1: अच्छा अच्छा, ये तो रही एक बात परामर्श की। अक्सर ऐसा भी हमने देखा है कि चूंकि आप जाते हैं फील्ड में, लोग एक बार दवा स्टार्ट कर देते हैं, वो अपने दवा को, उस ट्रीटमेंट को आधा अधूरा छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: उन लोगों से क्या समय समय पर संपर्क किया जाता है और उनको यही सलाह दी जाती है कि दवा अगर कोई भी वजह हो उसको बताएं, उसका संभवतः भरसक प्रयास किया जाता है। दवा किसी भी कीमत में छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पेशेंटों का जन्म होता है,
1: जिसे MDR कहते हैं।
2: एक पॉइंट और
1: जी,
2: दरअसल क्या है कि जो भ्रामक है ना, एक जो अज्ञानता तो है ही, जागरूकता की कमी है, लेकिन सबसे एक जरूरी पॉइंट है ये हमारा कम्युनिटी का पॉइंट है। यहाँ पे जो है जितनी कम्युनिटी है उसमें हिंदू मुस्लिम सभी कम्युनिटी जाते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें लोगों के अंदर क्या है कि उनको नॉलेज नहीं है, इलिटरेट है वो, तो उनका ये रहता है कि नहीं टीबी कोई बीमारी नहीं है, वो समझते हैं सिर्फ एक मौसमी बीमारी है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन टीबी के साथ सबसे ज़्यादा अगर बहुत कॉमन है तो वो एड्स है। अगर पेशेंट को टीबी है देन इट इज 99% चांस दैट विल गेट एड्स,
1: बिकॉज़ लो इम्यूनिटी। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब
2: जी,
1: किसी को टीबी है तो वो कन्वर्ट एड्स में हो सकता है,
2: कन्वर्ट नहीं एसोसिएट हो सकता है उसके साथ, बिकॉज लो इम्यूनिटी की वजह से। अगर लो
1: इम्यूनिटी
2: जी, बिकॉज मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है पेशेंट और लो इम्यूनिटी, और अगर वो कोई STD के कॉन्टेक्ट में आ रहा है या अनप्रोटेक्टेड कोई किसी तरह का कार्य कर रहा है तो देन ही इज अ वेरी हाई चांस टू गेट एट एड्स।
1: मैं थोड़ा सरप्राइज इसलिए हूँ क्योंकि मेरे एक मित्र की डेथ इस तरीके से हुई, जैसे HIV का आपने जिक्र किया।
2: उसमें क्या है ना कि जैसे आपने बताया था, उसमें क्या है कि रेगुलर अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला कि छोड़ देंगे ट्रीटमेंट, तो फिर उसमें क्या इन्फेक्शन आपका ब्रेक डाउन नहीं होगा।
1: यही हमारा सुनो शारदा 90.8 FM काम कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, अवेयर कर रहा है। जैसे आपने कहा कि शिक्षा का अभाव है, लोग अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से इस बीमारी को,
2: लेकिन अवेयर होने के बावजूद भी उनके मन में एक पता संदेश यह है कि अगर हम किसी को बताएंगे तो हमसे जैसे छुआछूत आपने बोला, हालांकि आजकल सब मॉडर्नाइज्ड है, एवरीवन इज एजुकेटेड, सबके पास मोबाइल है, लेकिन फिर भी हम लोग ना मेंटली उस चीज को काउंसिल कराते हैं, इसलिए काउंसिल करते हैं उनको कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि टीबी आप जानते हैं कि एयर ड्रॉप इन्फेक्शन, अगर किसी के पास में छींक रहा हूं या इसमें जा रहा है मेरा ड्रॉपलेट, तो सीधे उसको होना ही होना है, हाईली कॉन्टेगुअस है, हाईली स्प्रेडजनस है, और अगर पल्मोनरी है तो देन डेफिनेटली एक बार को अगर आपके पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, इधर पॉट स्पाइन जिसको हम टीबी ऑफ स्पाइन कहते हैं, या न्यूरोलॉजिकल टीबी जो ब्रेन की टीबी होती है, तो उसमें आपके पास चांसेस हैं सर्वाइव करने के। बट अगर आपको पल्मोनरी टीबी है देन यू आर प्रोन टू द हाई इन्फेक्शन एंड यू कैन कॉज टीबी टू अदर पेशेंट्स ऑल्सो, जिनका इम्यूनिटी अगर लो है या जो आपके साथ में बैठे हैं और उनको जानकारी नहीं, क्योंकि आपने उनको नहीं बताया कि आपको टीबी है।
1: जी जी,
2: दैट इज अ बिग रीजन। मास्क कोई लगाता नहीं है,
4: मेन है प्रोटेक्शन।
1: सर आपका शुभ नाम?
4: मेरा नाम राजीव कुमार शाक्य है और मैं चीफ फार्मासिस्ट के पद पे BSC रघुपुरा पे तैनात हूँ और लास्ट 14 साल से मैं इस महकमे में हूँ।
1: हाँ, तो आप यहीं पर पोस्टेड हैं?
4: हाँ, मैं यहीं पोस्टेड।
1: कैसा अनुभव रहता है टीबी पेशेंट के बीच में, जब उठते बैठते हैं, जब उनको जज करते हैं?
4: हाँ, जब जज करते हैं टीबी पेशेंट का जजमेंट आ जाता है, जैसे ही वो घुसता है तो उसका जजमेंट आ जाता है, हम समझ जाते हैं कि इसका हमें ये कराना चाहिए।
5: खांसी,
4: खांसी है, वेट लॉस है, और शाम के टाइम पे अक्सर क्या होता है, कहता जो हमारा गांव एरिया है, ग्रामीण एरिया है ना, उसमें वो लोकल लैंग्वेज में कि हमें बॉडी एक हो रहा है, वो मतलब दर्द हो रहा है, तो उसके आधार पे समझ के मैं उसको ना एक स्पूटम टेस्ट तो कराना ही कराना है। अगर नहीं उसमें आ रहा है तो देन वी विल रेफर टू दिस चेस्ट एक्सरे। और सबसे ज्यादा उसको ना अवेयर करना बहुत जरूरी है कि घर में अब जैसे माँ को टीबी है तो बच्चे को कैसे अपना स्तनपान कराए, कैसे हाँ जी, और जी, क्या कराए, इस चीज का हम अवेयरनेस पेशेंट को देते हैं, काउंसिल करते हैं उसको, क्योंकि वो अपना मास्क लगाए है उसके बाद उसको स्तनपान करा के और उसके हिसाब से
1: आइसोलेशन में
4: रहे। यस यस। और सबसे सर महत्वपूर्ण बात करूंगा कि इसमें ना मेडिसिन का राइट डोज जो है ना वो बहुत जरूरी है,
1: राइट टाइम पर, मेरे ख्याल से
4: राइट टाइम पे राइट डोज,
2: कांट मिस द सिंगल डोज,
4: एंड डोज फ्रॉम द न्यू डोज शुड बी अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट।
1: अच्छा, ये हमने सुना है, डॉक्टर साहब यही बताते हैं।
4: डोज शुड बी अकॉर्डिंग द बॉडी वेट,
1: वजन के हिसाब से ही दवा आपको लेनी होगी और सही समय पे लेनी होगी,
2: सही समय पे लेनी।
1: जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि एमडीआर रूप इख्तियार कर लेती है अगर आपने दवा सही समय पर नहीं ली, तो क्या क्या और दिक्कतें परेशानियां हो सकती है?
4: एमडीआर जब होती है, अभी पेशेंट आया हमारे पास, उसने 2 महीने दवाई ली और उसके बाद कहता मैं ठीक हो गया हूँ, और फिर उसके बाद बेटर फील हो रहा है, वो ड्रॉप कर देता है बीच में दवाई को, तो फिर वह क्या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है। तो इस प्रकार के पेशेंट को ये एमडीआर होता है, नहीं तो अगर पूरी दवाई खाए ना तो 100% ठीक हो जाए।
1: डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके ऊपर लेवल की अगर मैं बात करूं कि जैसे साधारण तौर पर आपने हमें बताया कि छाती की टीबी या और भी प्रकार की टीबी होती है, तो क्या क्या गंभीर परिणाम आ सकते हैं एक टीबी पेशेंट की जिंदगी में?
2: गंभीर परिणाम सबसे जरूरी क्या है, एक तो मेंटली वो आइसोलेट हो गया सबसे पहले, दूसरा क्या है कि हमें उसको सपोर्ट देना है बहुत ज्यादा, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर कोई टीबी पेशेंट अलोन है या उसके परिवार में कोई नहीं है तो उसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर गंभीर परिणाम है कि अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला देन ही विल सफर सीवियर वेट लॉस, वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, और साथ में मेंटली ब्रेकडाउन तो है ही, और उसके साथ में मेनली क्या होता है लीवर पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। अगर आप टीबी आपको है और आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उस टाइम पे हमें लीवर का और किडनी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसने नहीं इन चीज़ों का ध्यान रखा तो डेफिनेटली ही विल सफर सीवियर।
1: अच्छा, जो घर वाले हैं ऐसे समय में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपने फैमिली मेंबर को, जो पेशेंट है उसको,
2: परिवार के लिए, अगर किसी परिवार में कोई टीबी ग्रस्त मरीज है तो सबसे पहले वो घबराए नहीं, अपने नजदीकी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराएं। अगर हल्के से भी लक्षण उनको आ रहे हैं, या सांस फूल रहा है, या बुखार है, या छाती में दर्द है, या खांसी है, या नज़ला जुकाम जैसा भी कई बार हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कई बार एक लिटिल इन्फेक्शन से भी हमें पता लग जाता है कई बार कि टीबी हमें है। अगर किसी फैमिली में हिस्ट्री है, इट विल डिपेंड ऑन द हिस्ट्री, जो हम हिस्ट्री ले रहे हैं पेशेंट की फैमिली में किसको है, उसके चाचा है, ताऊ, उसकी मम्मी को, या उसकी सास फादर को, या फादर इन लॉ को, अगर किसी को रही है तो
1: इस बात को जो पेशेंट है वो खुल के बात कर पाते या संकोच रहता है?
2: समटाइम्स मतलब वो खुल के आते हैं, समटाइम्स नहीं आते। जैसे मैंने बोला कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, और टीबी आप जानते हैं कम्युनिटी डिजीज है, तो एक कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, माइक से संदेश भी भिजवाते हैं, ऐलान भी कराते हैं मस्जिदों में भी,
1: और देखिए हमारा वीडियो भी काम कर रहा है।
2: जी बिल्कुल। यस यस। नहीं, आपका जो माध्यम है वो तो सबसे बड़ा माध्यम है एक तरीके से, क्योंकि आरजे रेडियो जो कि हम सुनते हैं 93.5 बहुत सारे हैं,
1: जी जी,
2: और 90.8 भी कुछ समय से काम कर रहा है, तो आपका काम सराहनीय है। क्योंकि क्या है कि आजकल क्या है, सब डिजिटलाइज हो गया है। एक जमाना था जब पहले सब एफएम के जरिए ही बैठा करते थे, उसी पे अपना टोन करते थे और उसी पे सुनते थे, तो वो जरूरी है मेरे हिसाब से।
1: राइट सर। सर मैं सरकार की योजनाओं के बारे में जानना चाहूंगा। नो डाउट सरकार इसका फ्री इलाज करती है, जैसे सर ने बताया कि अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाती है, और क्या क्या है
4: मतलब आपका जितने भी टीवी का टेस्ट है सब फ्री है, उसके साथ में सारी दवाइयां फ्री हैं, और उसका जो पोषण, सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है जो पोषण भी देते हैं टीबी पेशेंट को, वो भी फ्री है एब्सोल्युटली। और उसके साथ साथ में इनके अकाउंट में जो टीबी पेशेंट है पैसे भी आते हैं, ये सरकार पैसे भी देती है,
1: प्रोत्साहन राशि है, जैसे
2: ट्रीटमेंट पूरा कराए।
1: इसमें कहीं कोई दुविधा तो नहीं आती, जैसे मुझे पता चला है कि पहले 500 रुपए थे अब 1000 रुपए हो गए,
2: तो ये लगा आपको ये बताइए, क्योंकि ये
1: दुविधा बताइए सर,
3: इसमें कोई दुविधा नहीं है। 1 नवंबर से 1000 रुपए प्रति माह पेशेंट के लिए किया गया है, वो गवर्नमेंट का प्लान है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
1: अच्छा, निक्षय मित्र भी एक योजना है, उसके बारे में बताइए।
3: वो सर इसमें हमारे ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, उनको ज्यादा डीपली नॉलेज है।
1: अच्छा, वो आज अनुपस्थित है, क्षेत्र में गए
2: और उसी के अकॉर्डिंग उसको सब कुछ देखना होता है, उसको सारी डोज, उसको सब कुछ पता है ऐप के थ्रू अगर वो एजुकेटेड है तो। और अगर कोई एजुकेटेड नहीं है तो उसको हम हिंदी में ऐप डाउनलोड कराकर बताते हैं और उसे समझाते हैं किस तरीके से उसको संचालित करना है, क्योंकि आजकल हर घर में सबके पास मोबाइल है और हर घर में ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं उसे।
1: कोई एक बात जो आपको लग रहा है कि गगन ये बात छूट रही है, ये बात मैं बताना चाहता हूं,
2: हमारा स्पेशल किसने, हम यही बताना चाहेंगे कि कोई भी इस बीमारी को लेकर घबराए नहीं, क्योंकि जैसे हमारी भारत सरकार इसकी तरफ अग्रसर है और हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि टीबी मुक्त भारत हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में बहुत ही पुराने समय से। जैसे हमने पोलियो को भी जड़ से उखाड़ फेंका है, एक समय पोलियो में हमारा देश सबसे पीछे था, आज हमारे पास 0 पेशेंट है पोलियो का
1: जी।
2: तो ऐसे टीबी के लिए भी क्या है कि बस थोड़ा सा प्रोत्साहन करना है और पेशेंट को मेंटली ब्रेकडाउन नहीं होना है। वो कहीं पर भी अगर किसी भी जगह पर जा रहा है, सरकार ने हर अस्पताल में सुविधा दी है सरकारी अस्पतालों में, और अगर आपके पास नहीं है टाइम तो आप प्राइवेट में भी जाके जांच करा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: अगर आप सोच रहे हैं सरकारी में, कई बार ऐसा होता है पेशेंट के मन में कि नहीं मैं सरकारी में जाऊंगा तो मुझे उचित लाभ नहीं मिलेगा, तो सरकार ने प्राइवेट में भी सुविधा दी है, वहां भी आप जाके जांच करा सकते हैं। संदेश ये है कि अपना एक भी डोज ना छोड़ें और समय समय पर 15-15 दिन पर आकर अपने अस्पताल पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाएं। जैसा कि जनरली क्या होता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के 1 महीने के बाद कमजोरी आना, उल्टियाँ आना, पेट दर्द होना, वॉमिटिंग होना, ये हल्की सी शिकायतें आती हैं मरीजों को, तो उन सभी का समाधान के लिए हम 24 घंटे कार्यरत हैं इस केंद्र पर और हम हमेशा आश्वासन देते हैं कि उनको पूरा इलाज मुहैया कराया जाएगा हमारे केंद्र पर।
1: और इसीलिए
4: जी एक बार जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी टीबी पेशेंट जिसके भी घर में हैं आसपास है ना, उनको नजरअंदाज मत किया जाए, उनको सपोर्ट करें विद प्रोटेक्शन।
2: ये बॉम्ब तरीके के, हम एक बॉम्ब पे बैठे हैं इस तरीके से समझिए। जैसे कोरोना बीच में भी आया था 2021 में, तो सभी लोगों ने उसके बीच में सब लोग दहशत में आ गए थे, तो टीबी का भी क्या है, सिम्टम्स अलग है लेकिन है रेस्पिरेटरी इलनेस, ये भी जैसे कोरोना रेस्पिरेटरी इलनेस था सार्स को भी। इसमें क्या, उसमें जल्दी इंसान को पता चल रहा था और जल्दी उसमें मौत हो, इसमें क्या, ये लेट डिजीज है बट यू विल डाई फॉर्चुनेटली इफ यू नॉट गेट द ट्रीटमेंट करेक्टली।
1: सही समय पर इलाज बहुत जरूरी है और मरीज को सौतेला व्यवहार ना करें।
2: अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं अंटिल अनलेस यू विल गॉट सीवियर।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि सर अदरवाइज अगर आपने लापरवाही बरती, कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, आपका मरीज
2: है ना, किसी भी चीज के लिए अगर हम क्या करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हैं मतलब क्या करना कि हमें जैसे स्प्रे कराते हैं हम, उसके बाद में अगर हम अवेयरनेस दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक यही है प्रिवेंशन, ये रोकथाम, मास्क वियर कर रहा है। अगर किसी कम्युनिटी में कोई पेशेंट निकल रहा है तो हमको बताएं उस कम्युनिटी के लोग, जैसे उस कम्युनिटी में प्रधान है या कोई मस्जिद में है या कोई इमाम साहब है या कोई मान्य व्यक्ति जो भी होते हैं, वो अगर आकर हमें बताएं तो फिर हम उस जगह सर्वे करें, हमारी टीम जाती है सर्वे करने के लिए समय समय पर, तो अगर वहाँ पर कोई पॉजिटिव आता मिलता है तो फिर हम पूरे इलाके की जाँच कराते हैं फिर
1: जी,
2: ताकि उस क्षेत्र में कोई रह ना जाए।
1: ठीक है,
2: बाकी सरकार ने 1 जनवरी से शुरू भी किया है प्रोग्राम, तो उसकी तरफ भी हमारा ध्यान है, जैसे ही हमारे पास उसके बारे में कोई जानकारी आएगी तो उसी प्रकार से फिर हम आगे कार्यवाही करते रहेंगे उसके अंदर।
1: लगभग अगर फाइनली मैं जानूं तो कितने मरीज अब तक आ चुके हैं और
2: मरीज हमारे पास ऑन एन एवरेज, नहीं इस बारे में डेटा आपको प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि मेरा यहाँ पे डेटा का काम नहीं है।
4: डेटा किस तरीके से चाह रहे हो, 1 जनवरी से?
1: हाँ 1 जनवरी से, जैसे
4: 1 जनवरी से अभी तक मेरे पास 100 डे का प्रोग्राम है, अभी डायग्नोसिस बतौर अभी तो 2 ही पेशेंट,
1: मतलब कुल मिला के यहाँ पेशेंट मिल भी रहे हैं और ठीक भी हो रहे
4: हैं, निकलते हैं मिलते भी है, पूरा ट्रीटमेंट होता है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ये नया डेटा है, ये अभी 100 डे से
1: उन्मूलन का जो कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों ने हमें सर बहुत समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें विस्तार से बताई और इस बात के लिए दिल की गहराइयों से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है और नो डाउट कि जब इस तरीके से धरातल पर काम हो रहा है, सरकार की योजनाओं को जन जन तक आप लोग पहुंचा रहे हैं, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो मरीज भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर,
4: थैंक यू सो मच 98.2,
2: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर,
1: थैंक यू,
2: आपने अपना समय दिया, ये बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है।
5: सोनू के घर पे चाय के कप से ज्यादा इनाम में जीते हुए कप है, घर का हर एक कोना गवाह है उसकी काबिलियत का, उसके जुनून का, और शायद उसके इरादों पर लगने वाली उस धूल का। क्योंकि सोनू के पिताजी को टीबी है, न जाने कितने बच्चों के सपने टूट जाते हैं टीबी की वजह से। टीबी ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके, जरूरत है इसे पहचानने की और पूरे इलाज की।

0: लड़ाई भी हारेगा, देश जीतेगा।
1: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ गई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: तो आइए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण मुहिम के तहत, जो एक जानलेवा टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सुनो शारदा रेडियो स्मार्ट के माध्यम से सभी देशवासियों को एक उपदेश रागनी के द्वारा सुनाते हैं, जिसके गायक कलाकार किरसन कुमार फरीदाबाद हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं नेपाल सिंह शर्मा जी, और ढोलक पर साथ दे रहे हैं मनोज शर्मा जी। तो आइए सुनते हैं एक महत्वपूर्ण संदेश।

0: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे टीवी जन जागरूकता पर ये उपदेश। गायक कलाकार थे कृष्ण कुमार और संगत कलाकार थे हारमोनियम पर नेपाल सिंह शर्मा और ढोलक पर साथ दे रहे थे मनोज कुमार शर्मा जी। तो गायक कलाकार कृष्ण कुमार और उनके संगत साथियों को उपदेश गायन के माध्यम से टीबी जन जागरूकता फैलाने के लिए सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, आपसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट मिलकर मुहिम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कही, तो सुनते रहिए।
1: तो दोस्तों, आपने सुना हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम, जहां पर हमारे साथी गगन जी और दीपाली जी ने डॉक्टर लेखराज सिंह और उनकी टीम से टीबी गोल्ड टेस्ट के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं और वो कैसे एक टीबी के पेशेंट को बचाने में मददगार हो सकता है और कैसे भ्रम की जो बातें समाज में फैलाकर टीबी से आपको मौत के करीब पहुंचाने वाली जो भ्रामक चीजें हैं उन्हें दूर करके सब कुछ आपके सामने परत दर परत हमारी टीम ने रख दिया। तो कैसा लगा ये एपिसोड हमें 01204060205 पर कॉल करके बताएं और वही अगर आप हमें अपने कोई सुझाव रखना चाहें या कोई सवाल आपके जहन में हो तो 90.8 FM@sharda.ac.in पर हमें अपनी राय लिखना ना भूलें। शुक्रिया।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं, फिनिश? अगर कुछ नहीं सोचा है आपने, तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: Shout it out.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8।
1: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
5: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराएं नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
4: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
5: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
4: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
5: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
4: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
5: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं, तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं, बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: आई एम सॉरी नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: इट्स ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी

0: अच्छा दुष्यंत, मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
1: सो व्हाट, मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
0: यू नो शेम, इट रियली हर्ट्स।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि आपको समसामयिक जानकारी मिलती रहे और सरकार की जो योजना है आपके लिए, हमारे ग्रामीण बहन भाइयों के लिए, उनका वो लाभ उठा पाए। और लाभ तभी मिलेगा जब आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी होगी। तो किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि वीवीजी रामजी ग्रामीण मिशन की। ये केंद्र सरकार की एक नई पहल है जो मुख्य रूप से मनरेगा का आधुनिक और उन्नत रूप है। किसान मित्रों, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही पारदर्शी भुगतान और स्थायी आजीविका प्रदान करना भी इसी योजना का मुख्य उद्देश्य है। देश के सभी गांव गरीबों और किसानों के चहुमुखी विकास और जरूरतमंदों को ग्राम स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी कि वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। हर हाथ को काम मुहैया कराने के लिए इस अधिनियम में अब एक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। मनरेगा अधिनियम में रोजगार की यह गारंटी मात्र 100 दिन थी। वीवीजी रामजी योजना देश के सभी गांवों की तस्वीर बदल देगी। ये गरीबों, खेतीहार, मजदूरों, किसानों सभी के लिए बेहद लाभकारी है। इस योजना से गांव के विकास को मजबूती मिलेगी। किसान मित्रों, पहले आपको कृषि से जुड़े कामों के लिए श्रमिक ही नहीं मिलते थे, पर वीवीजी रामजी योजना में कृषि के व्यस्ततम समय, विशेषकर बुआई और कटाई के समय, पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। इस योजना में यदि किसी ग्रामीण परिवार को उसके मांग करने के बावजूद तय समय सीमा के भीतर काम नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार तय की गई दरों और शर्तों के अनुसार संबंधित मांगकर्ता के परिवार को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए भी बाध्य होगी। इसी तरह काम पूरा कर लेने के बाद भी यदि किसी कारणवश मजदूर को उसकी निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है तो मुआवजे के तहत उसे विलंबित मजदूरी के रूप में अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही वीवीजी रामजी मिशन की। और आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना।
1: हम देश के वीर किसान खेत में,
2: सही बात है बिल्कुल।

चंद भाई सही है फौजी भाई, हमें आराम का सोना नहीं मिलता, लेकिन हमको भी नहीं मिलता फौजी भाई। कभी कभी तो बॉर्डर पर जब खतरा होता है

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि जो हमारे किसान बहन भाई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके खेती करते हैं तो वो ज्यादा लाभ कमाते हैं। तो हम बात खेती में तकनीक की कर रहे हैं, तो आजकल एक तकनीक का इस्तेमाल भी हमारे किसान बहन भाई खूब कर रहे हैं, यानी कि ग्रीन हाउस खेती कर रहे हैं, जो एक ऐसी तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से किसान भाई मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ये तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है। किसान मित्रों, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे होते हैं। इनमें सब्जियां सर्दियों के मौसम में पाले और गर्मियों में तेज धूप से सुरक्षित रहती हैं। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस तकनीक से खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से भी बचाया जा सकता है और ग्रीन हाउस में सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे किसानों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता है। तो किसान मित्रों, आप भी पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के माध्यम से खेती करके नुकसान से बच सकते हैं और खेती से फायदा उठा सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और किस्सा रहेगा द्रौपदी चीर हरण का।

किसान मित्रों, अभी आप रागनी सुन रहे थे। कलाकार थे रविंद्र खालोर और किस्सा था द्रौपदी चीर हरण का। किसान मित्रों, आप सभी चाहते हैं कि आपके खेत से अच्छा फसल उत्पादन हो, लेकिन उसके लिए खेत की मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। किसान मित्रों, पौधे के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अधिक पैदावार और लाभ लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना भी आवश्यक है। अब उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग कैसे किया जाए, तो इसके लिए तो मिट्टी की जांच की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो अंदाजे से तो हमारे किसान भाई कभी कोई खाद लगा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, वो भी लगाने जरूरत है वो भी लगा रहे हैं। लेकिन मिट्टी में सही मात्रा में खाद पहुंचे, सही पोषक तत्व पहुंचे और वो भी निश्चित मात्रा में, तो इसका पता तो लगेगा मिट्टी की जांच कराने के बाद। तो इसके लिए आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और उसी के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन करें ताकि आपको अच्छी पैदावार मिले और गुणवत्तापूर्ण पैदावार मिले। किसान मित्रों, मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, तो खेती से बेहतर पैदावार और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना बहुत जरूरी है। और साथ ही मिट्टी की जांच से पता चल जाता है कि भूमि में किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी अधिकता है। तो किसान मित्रों, आप भी अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और उसके अनुसार ही पोषक तत्वों का प्रबंधन करें ताकि आपको अपने खेत से अच्छा और बेहतर उत्पादन मिल सके। और अब किसान मित्रों, कार्यक्रम के आखिर में आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं सुनील चौहान।

सुनील चौहान द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: दीदी ना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं, कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

हरिया कालिया के पास और अपनी दर्द भरी सारी कहानी बताई। मेरी ब्याही ने मुझे हाथ पकड़ के डांट लिया, लेकिन मैंने तेरी भय की वजह से और अपने धर्म की खातर आज ब्याही से चीर ले लिया। कितना अधर्म मैंने

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं, और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगो कर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छान कर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: दोस्तों, समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय समय का फेर और समय बदलते सज्जनों लगे न कोई देर। मेहरबानो सत्यवान कि प्राण लेने के लिए यम के दूत आए, लेकिन सावित्री के तेज से वापस यमपुरी चले गए। महाराज, उसके ललाट से वो ज्वाला दहक रही है कि जिसके आगे हमारी एक न चली। मेहरबानो यमराज आश्चर्य में पड़ गए, वो कौन वीर है यमलोक में? मेरे मेहरबानो सत्यवान, आखिरी बातें अपनी ब्याही से कर रहा था। मेरे मरने के बाद अगर तुझे मुझसे प्यार है तो सती हो जाना और स्वर्ग लोक में आके मेल मिलाना, और सती ना होना तो मेरे मरने के बाद जप गायत्री मंत्र कराना, गौ माता का दूध जप में अवश्य रखना। मेरे मेहरबानो इतने ही में यमराज क्यों नहीं आ जाते हैं? सत्यवान के प्राण लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सावित्री हाथ जोड़ के यमराज के सामने खड़ी हो जाती है, महाराज मुझे विधवा करके मत जाओ।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 9370। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना सचिन कपूर। आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है ताकि वे इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम

0: माँ, मैंने कहा है ना, मुझे शादी नहीं करनी है माँ अभी। माँ, मैंने पहले ही आपको कहा है कि मुझे पहले अपने पैरों पर स्टैंड होने दीजिए, फिर शादी कर लूंगी ना।
1: तो क्या अभी तू सर केवल खड़ी है क्या? पांवों पे तो खड़ी है।
0: माँ माँ माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो?
1: क्या माँ माँ माँ, 26 साल की हो गई है तू? अरे तेरे साथ की सभी की शादी हो गई है, मेरे मरने के बाद शादी करेगी क्या?
0: माँ प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और ये इमोशनल अत्याचार मुझ पे मत किया करो माँ, मैं पहले ही तंग आ चुकी हूँ।
1: हाँ हाँ, अब मैं तेरी माँ जो तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ कि तुझे अत्याचार लग रहा है। जब भी शादी की बात करूँ हमेशा तो यही कहती है।
0: माँ।

0: हाय दीपक।
1: हाय पायल, कैसी हो?
0: नहीं हूँ ठीक यार, परेशान हो गई हूँ।
1: क्यों, क्या परेशानी चल रही है?
0: यार माँ फिर से शादी के पीछे पड़ी हुई है, और तुझे तो पता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। एक बार मैं अपने पैर पर स्टैंड हो जाऊँ तो फिर मैं शादी के लिए मना नहीं करूँगी, लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आती है।
1: अरे यार, सही तो कह रही है तेरी माँ, कब शादी होगी, फिर कब बच्चे होंगे। हम दोनों साथ में कॉलेज गए थे और हमारे सभी दोस्त की शादी हो गई है, पता है तुम्हें? अरे बताऊं किस किस की शादी हो गई है, नेहा, प्रीति, रीता, पल्लवी, देख ले मेरी भी तो शादी हो गई है ना, और एक न एक दिन तो शादी करनी ही होगी यार। पायल
0: यार, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? ऐसा नहीं है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं करना चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं करनी है, मुझे अभी अपना करियर बनाना है। चल ठीक है, मूड उदास कर दिया तूने मेरा, बाद में बात करूंगी तुझसे।
2: बस राधा, बहुत हो गया, बेटी हाथों से निकल रही है, इसके बाद कोई लड़का नहीं मिलेगा, तेरे साथ ही रहने वाली है क्या?
0: माँ, माँ मैं आ गई हूँ।
3: आ गई तू? तेरे अंकल का फोन आया था, क्यों सबसे मुझे बातें सुनाने को लगी है? 26 साल की हो गई और कब शादी होगी तेरी, और कब बच्चे होंगे? शादी और बच्चे में गैप होना जरूरी है, ये बात क्यों नहीं समझती तू? नहीं तो बाद में मुसीबत हो जाती है। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा अच्छा और बुरा समझती हूँ, और अगर कोई है तेरी लाइफ में तो मुझे बता दे।
0: ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती।
3: बस तेरा फिर शुरू हो गया? ये लड़का देख, दीदी ने भेजा है, और कितना अच्छा लड़का है, और फैमिली भी अच्छी है, और अच्छा कमाता है, और क्या चाहिए तुझे?
0: माँ आपको पता है ना इसको कैसी लड़की चाहिए, जो घर बैठकर इसके लिए रोटी बनाती रहे।
3: तो क्या हो गया, घर संभालना तो लड़की का काम होता है।
0: और मेरे काम का क्या, मेरे करियर का क्या? माँ आप क्यों नहीं समझती है, आपसे तो बात करना बेकार है। पता नहीं मैं क्यों बार बार आपके साथ बात करके टाइम वेस्ट करती हूँ, नहीं करनी है मुझे बात।
3: करियर, ये पता नहीं आज की लड़कियों को करियर करियर करने की क्या आदत हो गई है, पता नहीं कौन सी कंपनी की सीईओ बन जाएंगी जाके, बस करियर ही बनाना है, शादी वादी नहीं करनी है इन लड़कियों को।
0: क्या है माँ, शादी के टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक पर बात करने नहीं आती आपको क्या?
3: ताना देने के अलावा कुछ नहीं आता तेरे को क्या?
0: माँ आप छोटी छोटी बातों पर क्यों नाराज हो जाती हैं? कोई फायदा नहीं आपसे बात करने का।

0: माँ
1: माँ माँ क्या हुआ है? क्यों नहीं बात कर रही हो मुझसे? मेरी प्यारी माँ।
2: छोड़ मुझे, पीछे हो जा।
1: माँ क्यों नाराज हो? मुझे थोड़ा सा टाइम क्यों नहीं दे देते? शादी करने से सब ठीक नहीं होता, और आपको पता है शादी करके क्या, अगर वो भी पापा की तरह निकला तो मेरी जिंदगी आपकी तरह तवा। I'm sorry माँ, आपको बुरा लगा ना मेरी वजह से? मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो माँ, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दो।
2: नहीं तो ठीक कह रही है बेटा, मेरी वजह से तेरी जिंदगी खराब हो रही है। तेरे पापा तेरे पैदा होने पर मुझे छोड़ गए थे, इसकी वजह भी तो सिर्फ मैं ही हूँ। और हाँ, तभी तो तेरा शादी से विश्वास उठ गया है। तेरी बुआ शायद ठीक ही कहती है, मेरे पास्ट की सजा शायद तुझे मिल रही है।
1: नहीं माँ, जो आपके पास्ट में हुआ है उसकी गलती आपकी नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। माँ आप नहीं समझती अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है।
2: हाँ बेटा, लेकिन तू जानती है ना कि शादी भी जिंदगी का एक हिस्सा होता है।
1: माँ मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट। मैं जानती हूँ आपने कितने एफर्ट्स के साथ मुझे बड़ा किया है और इस मुकाम तक पहुँचाया है, और माँ आप एक खुद औरत हैं, तो क्या आपको लगता है कि लड़कियाँ पराया धन होती हैं? नानी ने आपको पराया धन कहा, और इसके बाद आज आप मुझे पराया धन कह रही हैं। कल को मैं किसी और के घर जाऊंगी तो वो भी तो मुझे पराया धन कहेंगे, तो फिर इनमें से मेरा घर कौन सा है माँ? एक औरत का घर कौन सा है, आप ही बताइए। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ माँ अभी, प्लीज आप इस बात को समझिए। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज।
2: हाँ रूपा। हाँ हाँ की है बात, पर देख यार, मेरी बेटी कोई गाय बकरी तो नहीं है कि हर किसी के साथ बांध दो उसको। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपनी आशा बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते? मुझे पता है आपको चिंता है, पर डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। आप अपना घर संभालिए और मैं अपना संभालती हूँ।
1: थैंक यू सो मच माँ, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, आई लव यू।
2: मेरी लाडली बेटी, मैं अपनी बच्ची की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती। तुझे जो अच्छा लगता है तू वैसा कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
1: बेहतर? बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
0: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
1: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
0: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
0: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
1: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: रहता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या भी?

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनि शाला में।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कोहली आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में लगातार बातचीत कर रहे हैं, इसमें NCERT द्वारा तैयार की गई वसंत भाग 2, जो कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, में शामिल एक पाठ है हिमालय की बेटियां, जिसके रचनाकार नागार्जुन हैं, उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, नागार्जुन एक बेहद चर्चित बहुमुखी बहुभाषी रचनाकार हैं। मेरा आशय ये है मित्रों कि नागार्जुन ने न केवल हिंदी बल्कि मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में भी रचनाएं की। उन्होंने सैकड़ों कविताएं लिखी, दर्जनों उपन्यास लिखे, साथ ही साथ मैथिली में भी समान रूप से लिखा। खास तौर से उनके दो कविता संग्रह हैं मैथिली में हैं और दो मैथिली में उपन्यास भी हैं, एक दर्जन हिंदी में उपन्यास हैं। इसके अलावा एक दर्जन कविता संग्रह भी हैं और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे और पत्र लेखन में भी उनका बहुत अधिक योगदान है, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों पत्र भी लिखे अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को समय समय पर। आज जिस पाठ पे हम चर्चा कर रहे हैं वो एक निबंध है, वो लेख है, या यात्रा संस्मरण भी हम उसको कहते हैं। अर्थात जब कोई भी हो सकता है, वो कोई बच्चा हो सकता है, कोई बच्ची हो सकती है, कोई बुजुर्ग है, रचनाकार है, कोई कलाकार है, जब वो कहीं जाता है किसी दूसरी जगह पे और वो जो देखता है, अनुभव करता है, उसको व्यक्त करना चाहता है। और नागार्जुन ने भी इस निबंध में, इस लेख में यही किया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हिमालय की बेटियां, अर्थात नागार्जुन ने जो हिमालय पे जाकर देखा उसी का इसमें वर्णन है। हिमालय से तो हम सब परिचित हैं कि वो उत्तर भारत में बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय की बेटियां जब हम कहते हैं तो हमारी जिज्ञासा पैदा होती है कि ये बेटियां किसके लिए, हिमालय की बेटियां। हिमालय तो पर्वत है, और अगर पर्वत है तो उसकी बेटियां, अर्थात यहां पे नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां जब कहा है तो वो दरअसल हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में अपने अनुभव साझा करना चाह रहे हैं हम लोग। जैसे कि मैंने कहा कि नागार्जुन मैथिली में भी लिखते थे और मैथिली में उनका नाम यात्री चलता था, और यात्री के पीछे भी एक रोचक कथा है दोस्तों कि नागार्जुन की एक पहचान पूरे घुमक्कड़ कवि, फक्कड़ कवि, और उन्होंने न केवल भारत बल्कि तिब्बत और श्रीलंका की भी यात्राएं की, और यात्रा का उनको इतना चाव था कि वो बार बार अपने जन्मभूमि बिहार से, दरभंगा से जो कि उनका जन्म स्थल है, उसमें एक गांव है दरभंगा में, वहां से वो बार बार भारत की यात्रा करने के लिए निकल जाते थे, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, गुजरात हो और मध्य प्रदेश हो, यहां तक कि श्रीलंका तक। उन्होंने अपनी शिक्षा अगर बिहार के गांव से शुरू की, बनारस में उन्होंने संस्कृत में अपनी शिक्षा पाई, तो अपने बाकी के अध्ययन के लिए, खास तौर से बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए, वो श्रीलंका भी गए, और उन्हीं की तलाश में बौद्ध ग्रंथों को खोजते खोजते वो तिब्बत भी गए। और तिब्बत जब हम जाते हैं तो आप थोड़ा नक्शे को देखिए, नक्शा हमें ऐसा दिखाई देगा, जब हम तिब्बत की ओर बढ़ते हैं तो हमें हिमालय पार करना ही पड़ेगा। अर्थात नागार्जुन जब तिब्बत जाते हैं तो वो हिमालय को देखते हैं। हिमालय को देखने के कई नजरिए हैं। आप शुरुआती तौर में जो नीचे वाली श्रृंखला है हिमालय की वो देखेंगे, फिर बीच वाली श्रृंखला, और फिर सर्वोच्च चोटियों तक जाते हैं। नागार्जुन ने हमेशा नीचे का हिमालय तो देखा ही, वो हमेशा जो कहते हैं ना हिमगिरी की पर्वत की जो सर्वोच्च कैलाश पर्वत तक, नागार्जुन के हिमालय के ऊपर एक नहीं कई निबंध हैं, जैसे कैलाश की ओर और सिंध में 17 महीने टिहरी से नेहलंग, हिमालय की बेटियां हम लोग देख ही रहे हैं। अर्थात नागार्जुन ने हिमालय को बार बार कई तरह से देखा और उन्होंने जब नदियों को देखा तो उनके मन में जो भाव आए उसी को इस निबंध में लिखा है। क्योंकि निबंध आपके सामने है, आपके साथ है, आप चाहे तो अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता ले सकते हैं और हम चाहेंगे कि पाठ के साथ साथ जो बात इसमें से निकल के आए वो हम आपसे साझा करें। तो हम पाठ को देखते हैं, हिमालय की बेटियां अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियों को नागार्जुन ने कैसे देखा, कैसे अनुभव किया, कैसे जाना और वो किस तरह से उसको हमें बताना चाह रहे हैं, यही सब इस पाठ में है। देखिए शुरुआत पाठ की बड़ी रोचक है। पाठ की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल इलाकों में मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। अर्थात नागार्जुन ने पहले जब भी देखा हिमालय को दूर से देखा और दूर से देखने पर जो नदियां निकलती थी वहां पे वो नदियां उनको बड़ी शांत दिखती थी, गंभीर दिखती थी और अपने आप में खोई हुई लगती थी। मानो कैसी दिखती थी, जैसे कि कोई संभ्रांत महिला हो, कोई कुलीन सभ्य शालीन महिला हो, उसकी भांति प्रतीत होती थी और उसको देख के आपके मन में आदर और श्रद्धा पैदा होती थी। और इन नदियों में उन्होंने वैसे ही डुबकियां लगाई थी जैसे कि हम अपनी दादी माँ मौसी की मामी की गोद में खेलते हैं, वो उसी तरह से उन नदियों में नहाते थे, खेलते थे। ये नागार्जुन ने जब तक उनको दूर से देखा था, लेकिन अब की बार जब वो हिमालय पे चढ़े, देखिए रोचक है कि इसमें लिखा हुआ है कि हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात ये पूरे पाठ को आप एक व्यक्ति की तरह देखिए। जैसे हम कहते हैं ना मानवीकरण, मानवीकरण का मतलब हम किसी चीज को एक जीवित व्यक्ति की तरह जब देखते हैं तो उसको हम हिमालय को कहा कि हिमालय के कंधे, एक व्यक्ति की तरह देखा, हिमालय की बेटियां अर्थात हिमालय को फिर व्यक्ति मान के कह रहे हैं कि उनकी बेटियां। तो ये जो आप किसी प्रकृति को, किसी भी चीज को जब व्यक्ति और मानव के रूप में कल्पना करके देखते हैं तो इस तरह की शब्दावली बनती है कि हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात आप जब हिमालय के ऊपर चढ़े तो वहां से देखा कि ये जो गंगा है, यमुना है, सतलज है, वो वहां तो इतनी दुबली पतली नजर आती हैं, लेकिन समतल मैदानों में जाकर वो एकदम विशाल हो जाती हैं और उनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर हंसना, ये सब जो भाव भंगिमाएं थी वो उनको लगता कि पहाड़ में तो सब दिखाई देता है लेकिन मैदानों में ये सब नहीं दिखाई देता और उनको बड़ा अचरज होता है, आश्चर्य होता है। वो कहते हैं कि मैं जब किसी लड़की को भी देखूं या कली पर किसी फूल पर मेरा ध्यान जाता है तब भी मुझे इतना कौतूहल

और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अर्थात नदियों का जो बचपन है, बाल रूप है, उतना आश्चर्य उनको बाकी चीजों को देखने पे भी नहीं होता जितना कि वो नदियों के बाल रूप। अर्थात वो बिल्कुल जहां से नदियां बनती हैं, पहाड़ों से, पर्वतों से और खास तौर से हिमालय से। जब हिमालय पे वो नदियों को देखते हैं तो फिर उनके मन में जिज्ञासा होती है कि कहां ये भागी जा रही हैं। मन में विचार आता है नागार्जुन के कि कहां भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अब सवाल तो यही है कि भाई वो तो हिमालय की गोद में खेलती हैं, फिर भी ये उससे अलग होके कहां जा रही हैं। देखिए बड़ा रोचक है कि शब्दावली जब चुनता है कोई भी रचनाकार तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे अतृप्त है, प्यास है नदी के लिए, खुद वो तो पानी है और उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है कि इनकी प्यास कौन मिटा सकेगा। और बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, वो बर्फ भी बोलते हैं उसको और बर्फ भी, जैसे गर्मी और सर्दी वाला मामला है ये। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधितक्याएं, सर सब्ज उपतक्याएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अर्थात ये नदियां जहां से निकलती हैं वो कैसा क्षेत्र है, वहां पे बर्फ जली नंगी पहाड़ियां हैं। मित्रों जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो वहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते नहीं, अर्थात वो उसको जला देते हैं, जितनी ऑक्सीजन जितनी धूप चाहिए वो उनको नहीं मिलती, तो वो बर्फ जली नंगी पहाड़ियां हैं। और होगा भी कहीं तो थोड़ा बहुत होगा, छोटे मोटे पौधे होंगे, छोटी मोटी घाटियां होंगी। और घाटियों के साथ साथ दो शब्द इसमें थोड़ा रोचक हैं, थोड़े कठिन से भी लगते हैं, जिसको हम कहते हैं कि नए शब्द हैं, बेसिकली मूलतः ये नए शब्द हैं कि बंधुर अधितक्याएं। बंधुर अधितक्याएं मतलब, बंधुर मतलब मुकुट, मुकुट उसका, अधितक्याएं, अधितक्याएं वो क्षेत्र होता है जिसको हम टेबल लैंड बोलते हैं इंग्लिश में। अर्थात आप पहाड़ की चोटी की कल्पना करिए और उस पे एक समतल एरिया का एक तरह से कोई टुकड़ा निकल आता है, कोई क्षेत्र निकल आता है, जैसे टेबल के ऊपर प्लेन होता है, वो टेबल ऊंची होती है, वैसे ही उसको टेबल लैंड जो होती है वो है सरसब्ज। सरसब्ज मतलब हरी भरी, उपतक्याएं घाटी, घाटी मतलब दो पहाड़ों की चोटियों के बीच में जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो आपको दिखाई देगा। अर्थात कहीं ऊंची जमीन है, कहीं नीची जमीन है, ऐसा है इनका लीला निकेतन, इनका खेलने का, लीला करने का जो क्षेत्र है वो मैदान, ऐसा लगता है मानो कि वो मुकुट की तरह हो और छोटी छोटी घाटियां कहीं ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और जब खेलते खेलते वे दूर निकल जाती हैं तो रास्ते में क्या क्या आता है, देवदार के पेड़ आते हैं, चीड़ आते हैं, सरो आता है, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद आने का मौका मिल जाता होगा। आप ये भी देखिएगा कि ये जो सारे पेड़ हैं, ये खास तौर से एक आध को छोड़ के वो सारे हिमालय में ही आपको मिलेंगे, हिमालय के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। देवदार हो, चीड़ हो, सरो हो, चिनार हो, ये सब आपको ऊपरी हिमालय से लेके जो हिमालय का क्षेत्र है वही मिलेंगे। और फिर जब वे वहां से निकल आती हैं तो हिमालय को कैसा लगता है कौन जाने, बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा इनके पास और रखा ही क्या है। आप देखिए कि बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। जैसे कोई बुजुर्ग है और उसकी बच्चे या बेटियां इधर उधर चले जाते हैं तो वो सिर धुनना एक मुहावरा है, परेशान होना। और मैं अगर या कोई भी व्यक्ति इन चोटियों से जाकर पूछता है तो भाई कहां गए आपके बच्चे, तो कोई जवाब नहीं मिलता, विराट मौन के सिवा उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। देख विराट चुप्पी, आप पहाड़ियों से जाके देखिए, एकदम शांति, कुछ नहीं आपको उत्तर मिलेगा। अब बेटियों, हिमालय, पहाड़, पर्वत के बाद, नदियों के बाद, अब वो दो उदाहरण देते हैं नागार्जुन कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम है जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अब
नागार्जुन दो उदाहरण देकर हमें बता रहे हैं, देखिएगा जितने भी ये नाम नदियों के मैंने लिए, ये सारे के सारे इन दो नदियों के ही हिस्से हैं, दो नदियों से ही निकलते हैं, कोई पहले मिल जाता है, कोई थोड़ा आगे चल के मिल जाता है। मुख्यतः दो नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। वो बताते भी हैं कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ने जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। कितना सौभाग्यशाली है यह समुद्र जिसे पर्वतराज की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। ये कुछ नहीं है, जैसे इन्होंने बड़ी सुंदर तुलना की है, जैसे दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, जैसे जब बर्फ जमना शुरू होती है तो एक एक जो ऑक्सीजन को जमाते हुए धीरे धीरे वो जमनी शुरू होती है और वो बर्फ इकट्ठा हो जाती है और वही महानदी बनके वो समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, चल पड़ती है। और फिर वो कहते हैं जाति कहाँ है, वो समुद्र में मिलती है। और समुद्र में मिलने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं नागार्जुन की मानो जैसे बेटियां हैं, बेटियों का हाथ समुद्र के हाथ में दे दिया हो, ऐसा लगता है कि वो कितना सौभाग्यशाली है कि उन्हें हिमालय की इन दो बेटियां, अर्थात ये दो मुख्य नदियां जाके बाद में समुद्र में मिलती हैं। अब एक ख्याल और आता है, एक विचार और नागार्जुन हमसे साझा करते हैं, और वो क्या है कि जिन्होंने मैदानों में इन दो नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में भी कुछ हिचक नहीं होती है। फिर वही बात कह रहे हैं कि जो लोग हिमालय पे रहते हैं, जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, उनके लिए बेशक ये लगता हो कि भाई ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, लेकिन जो सामान्य समतल क्षेत्र में रहते हैं वो इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो पहाड़ पे कैसी दिखती हैं। और अगर हम उसी प्रतीक को, उसी उपमा को आगे बढ़ाएं तो हमें ये लग रहा है मानो जैसे कि भाई आपने हिमालय को पिता कहा, नदियों को बेटियां कहा, समुद्र को दामाद कहा। मैंने कहा कि नागार्जुन बार बार हिमालय को देखते हैं, अलग अलग तरह से देखते हैं, हिमालय को महसूस करते हैं। और हिमालय की जब बात आती है तो एक चीज़ और मित्रों, कि नागार्जुन के प्रिय कवि कालिदास थे। संस्कृत में आप देखेंगे कालिदास हमारे बहुत ही और महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं संस्कृत के, और उन्हीं की एक रचना है मेघदूत। यहाँ पे नागार्जुन उस मेघदूत का, मेघदूत का आशय क्या है, मेघ मतलब बादल और दूत मतलब जो हमारा संदेशा लेके जाता है, अर्थात कालिदास ने बादल की कल्पना एक दूत में, दूत के रूप में की, जो कि उसका संदेशा ले, किसका संदेशा लेके जाता है, उसके पीछे एक कथा उन्होंने कही मेघदूत में कि यक्ष और यक्षिणी की एक कथा कही, दो कहिए कि क्या कहेंगे हम उसको, जनजाति समूह कह लीजिए, देवलोक के प्राणी कह लीजिए, हिमालय में रहने वाले मनुष्य कह लीजिए, देवता कह लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, यक्ष और यक्षिणी की जो विरह गाथा है उसको आधार बना के कहा, और वो उसका संदेशा लेके कहता है कि मेघदूत जाए, उसी का संदर्भ इसमें है। और वो क्या कहते हैं, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, क्या कहा था, और आपको पता चल ही गया कि कालिदास की चर्चा हो रही है जो कि आज से लगभग 1500-1600 साल पहले हुए, और विरही यक्ष की वो अलग अलग हो गए, यक्ष और यक्षिणी, उसको अपना यक्ष का संदेशा लेके के वो जा रहा है यक्षिणी के पास। वो क्या कहा, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर प
पहुंचेगा। जिन्होंने अलग अलग देखा है कि मान लीजिए कोई यूपी बिहार में उसको देखेगा तो बिल्कुल शांत रूप में बहती हुई दिखाई देंगी, पहाड़ पे देखेंगे तो अलग रूप दिखाई देगा। लेकिन बेतवा, इसमें देखिए वेत्रवती लिखा हुआ है, अर्थात कुछ चीजों के, वस्तुओं के, जगहों के, नदियों के, क्षेत्र के नाम आपको संस्कृत में और दूसरे काव्य में अलग मिलेंगे। और ये उसी का उदाहरण है, ये बेतवा नदी को ही, जो कि मध्य प्रदेश में है, कि जब वो कह रहा है यक्ष कि मेघदूत तुम मेरा जब संदेशा लेके जाओ तो वहाँ रास्ते में आपको बेतवा नदी मिलेगी, वेत्रवती नदी मिलेगी, वहाँ ठहर के भी थोड़ी देर बारिश करना और उसको भी प्रेम का प्रतिदान देते जाना और निश्चित रूप से वो आपसे मिलके अर्थात आपको पाकर खुश होगी। ये बात वो फिर कह रहे हैं कि शायद उस महाकवि यहाँ पे कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूपक, और सचेतन चेतना वाला जीवित रूपक मतलब उसकी तुलना करते हुए उसका पूरा एक तरह से प्रतीक बना के, बिंब बना के, जो हमने पहले बात की थी मानवीयकरण की, है ना, कि हम उसको जिंदा रूप में कल्पना करते हैं, नदी को भी, पहाड़ को भी, और यहाँ पे भी वो यही बात करें, कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूपक बहुत पसंद था, वहाँ आप बारिश करते हुए जाना। एक उदाहरण और देते हैं फिर इसके बाद नागार्जुन, वो क्या है कि जैसे बेटियों की कल्पना की, प्रेषी की कल्पना की, और फिर वो कहते हैं कि एक रचनाकार का और उदाहरण लेते हुए, वो कौन है, वो है काका कालेलकर। काका कालेलकर कौन थे? काका कालेलकर हमारे स्वाधीनता संग्राम के एक सेनानी थे, खास तौर से उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ बहुत कार्य किया, उनके सहयोगी रहे, और उन्होंने क्या कहा, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा कि ये हमारे जन की माताएं हैं, हमारी देश दुनिया की माताएं हैं, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेषी मतलब प्रेमिका की भावना भी करें तो कैसा रहेगा, ममता का एक और धागा भी है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं, और वो क्या है कि माँ है, बेटी है, प्रेषी है, और एक और धागा है, वो क्या है, बहन। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी भावना ऐसी ही हुई, थोलिंग जैसा मैंने बताया था, ये तिब्बत में जगह है और नागार्जुन वहां गए और हिमालय को पार करते हुए वहां जाना पड़ता है। थोलिंग में जब वो थे तो एक दिन उनकी तबीयत, मन थोड़ा उचाट हुआ, परेशानी हुई, तबीयत ढीली हुई, सतलज के किनारे जाकर मैं बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। और फिर नागार्जुन एक कविता वहां पे लिखते हैं आपके लिए, और अपनी अभिव्यक्ति है, उनकी अनुभूति है, और वो यहाँ पे नदियों को, खास तौर से सतलज नदी को, बहन के रूप में संबोधित कर रहे हैं। और वो कविता क्या है, बड़ी सुंदर छोटी सी प्यारी सी कविता है, जैसे हम इसको पढ़ें, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन, मेरा मन खुश हो गया, हटा खुमारी, जो आलस्य था, जो कष्ट था, खुमारी जो थी वो दूर हो गया, इसलिए जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पे कुर्बान हूं, और तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, वो बेटी की तरह से हिमालय देखता है नदियों को, प्रकृति नटी अर्थात जो प्रकृति रूपी नटी है उसके चित्रित पट पर, जो उसकी सृष्टि है, जो उसका चित्रण किया जाता है, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, उसके ऊपर सुंदर मानो की छाप लगी हुई है हिमालय की, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। मित्रों, देखा आपने कि नागार्जुन ने हिमालय को, हिमालय से निकलने वाली नदियों को
किस किस रूप में चित्रित किया। कभी वो उनको बेटियां कहते हैं, कभी प्रेमिका के रूप में देखते हैं, कभी माँ के रूप में देखते हैं, कभी बहन के रूप में देखते हैं। और आप और हम सभी चाहते हैं कि हम प्रकृति का आनंद लें और इनको देखें, अनुभव करें, तभी हम अपनी रचना भी कर सकते हैं। जैसे नागार्जुन ने की, हमें भी कोशिश करनी चाहिए जिस भी प्रकृति के अंश को या कोई भी अनुभव जो हम देखते हैं समझते हैं उसको देखें और लिखने की बोलने की कोशिश करें, तो ये जो पाठ है वो हमारे काम का होगा। और एक सवाल और एक जिज्ञासा बच्चों की ये भी रहती है कि जो पाठ के पीछे अभ्यास दिया रहता है उसको हम थोड़ा आपसे बातचीत करें। इसमें कोई खास या कहिए विशेष उलझाव वाली बात नहीं है। प्रश्न अभ्यास हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि वो पाठ को पहले से ज़्यादा खोले, उस पे और विस्तृत बातचीत हो। जो कोई बिंदु हमारा पाठ में छूट जाता है हम उसको अभ्यास के माध्यम से कहते हैं, और उसके पाठ के साथ साथ पाठ के आगे की जो बातें हम चाहते हैं कि उसमें शामिल हों वो भी हम लोग पाठ और प्रश्न अभ्यास के माध्यम से देख सकते हैं। अब अगर आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको इसके पीछे दिए गए जो प्रश्न अभ्यास है वो भी सहज लगेंगे। जैसे कि आपने इसमें एक सवाल है, मान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को उसकी क्या विशेषताएं हैं, काका कालेलकर ने लोकमाता क्यों कहा है, ये सारे सवाल पाठ में आप जब पढ़ेंगे उस हिस्से में आपको दिखाई देंगे। बातचीत में भी हमने उनको थोड़ा सा खोलने की कोशिश की, उस पर विस्तार से बातचीत करने की कोशिश की। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी कविताएं दूसरे कवियों की हैं, जैसे कि इसमें उदाहरण दिया गया है कि गोपाल सिंह नेपाली की कविता है हिमालय, और हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता है हिमालय, जयशंकर प्रसाद की एक कविता है हिमालय के आंगन में। आपको अगर अपनी पुस्तकालय लाइब्रेरी इंटरनेट पर ऑनलाइन माध्यमों पर जहां कहीं पर भी उपलब्ध हो वो हम उसकी सहायता ले सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात भी बता दूं कि NCERT CIET ने नागार्जुन के ऊपर एक फिल्म भी बनाई है, आप वो फिल्म भी देख सकते हैं, आप नागार्जुन के जीवन को अनुभव करेंगे। इसके अलावा एक बात हमारे लिए थोड़ी सी बातचीत की ये हो सकती है कि एक सवाल आता है कि कुछ व्याकरण के बिंदु हम लोग डिस्कस करें, और वो इस पाठ के पीछे जो भाषा की बात है उसके माध्यम से हमने व्याकरण के कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने की कोशिश की है। जैसे कि आप इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे हमने संज्ञा किसी पहले पाठ में की, छठी में की, और अगर आप इसमें देखेंगे तो हमने विशेषण और विशेष्य की बात की है, अर्थात विशेषण जो किसी भी चीज की विशेषता बताए, जैसे कि संज्ञा है, स्वरनाम है, और संज्ञा स्वरनाम क्या है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का उसका नाम है या फिर इनकी जगह जो इस्तेमाल होता है उसकी जो विशेषता बताता है। हमेशा कोशिश करिए कि जो भी व्याकरण का बिंदु आप बातचीत करना चाहते हैं वो पाठ की सहायता से करिए, उसका संदर्भ लेके करिए, कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वो बात हमें अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि इसी पाठ में बहुत सारे उदाहरण आए हैं कि वो संज्ञा और उसकी विशेषता बताने वाले हैं। जैसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे उसमें दिया हुआ है, मान लीजिए वर्षा है, वर्षा के आगे क्या लगा हुआ है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, अर्थात वर्षा की विशेषता बता रहा है ये। जैसे इसमें एक शब्द आया जंगल, जंगल कैसा है, घना है, वो उसकी विशेषता बता रहा है तो विशेषण है। नदियां हैं, नदियां कैसी हैं, चंचल है, तो वो इसी पाठ के माध्यम से आप देखिएगा संज्ञा और उसकी विशेषता बताने वाले जो विशेषण है, अर्थात हम पाठ की सहायता से ही व्याकरण के बिंदु भी चर्चा कर सकते हैं। एक उदाहरण इसमें और भी है जिसकी चर्चा मैंने पाठ में भी की थी, वो था कि कुछ चीजों के, कुछ शहरों के, कुछ जगहों के पुराने नाम हमने लिए हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण आया था, उसी वेत्रवती नदी के लिए ही बेतवा नदी आया था, और इसके पीछे भी कुछ नाम दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे रोपड़ है, रोपड़ के लिए उसका मूल नाम एक सूची दी हुई है, उसकी सहायता से रूपपुर है। जैसे बनारस है, बनारस को हम आज वाराणसी कहते हैं, अजमेर को अजमेर है, अजय मेरू कहते हैं, और बहुत सारे उदाहरण हैं। आप
पाठ की सहायता लीजिए, धीरे धीरे पाठ को पढ़िए, समझिए एक बार दो बार, ऑडियो की सहायता लीजिए, वीडियो की सहायता लीजिए। जो हाँ, एक चीज और मैं कह दूं संक्षेप में ही, वो ये है कि जो कोई नया शब्द आए, जैसे इसमें उप तक क्या था, थोड़ा लगता है कि सर शब्द था, संभ्रांत था, तो इस पाठ्य पुस्तक के पीछे एक शब्द कोश भी दिया हुआ है। आपको शब्द कोश डिक्शनरी देखनी भी आएगी, समझनी भी आएगी, आप उसकी सहायता ले सकते हैं, और आपको जब चीजें समझ में आएंगी तो आप पाठ का पूरा आनंद ले पाएंगे। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें, सुने, देखें और इसका आनंद लें। धन्यवाद।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

0: साल वो छोरा गंगा
1: सो शारदा
2: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878939370

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
2: आए पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
1: वो
2: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
3: क्या, क्या हो बेटिया?
4: डॉक्टर साहब,
5: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
3: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
2: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
4: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा।
5: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए। अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: 1 छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब ज़िंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं। और पंचम मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी जलवायु। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि कृत्रिम या बनावटी बारिश कुछ रसायनों की मदद से एक निश्चित क्षेत्र में की जाती है। आज मौसम में परिवर्तन करने से ज्यादा जरूरी है महासागरों और वायुमंडल प्रणाली को दूषित होने से बचाना, क्योंकि तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि भयानक तबाही ला सकती है। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी जलवायु।

0: होगा ये, यहां भी नहीं है। उधर देखती हूँ, अरे यहां भी नहीं है। मानव ओ तू यहां बैठा है और मैं कहां कहां तुझे ढूंढाई, और तू यहां पिछवाड़े वाले बगीचे में अकेला बैठा है, यहां क्या कर रहा है? अरे बोलता क्यों नहीं, क्या कर रहा था? अरे बता ना क्या हुआ, कुछ बोलता क्यों नहीं?
1: कुछ नहीं दीदी।
0: अरे मानव क्या हुआ, तू तो बड़ा दुखी दिख रहा है, इधर आ इधर आ इधर आ मेरे प्यारे भाई, चल अब बता क्या हुआ।
1: दीदी वो जो दो पेड़ मैंने बगीचे में लगाए थे ना।
0: अच्छा अच्छा, वो ऑर्किड का पौधा और वो सेब का?
1: हाँ हाँ वही, वो दोनों मर गए।
0: ओहो तो ये बात है। अरे बुद्धू तुझे कितना मना किया था कि ये पौधे मत खरीद, ये अपने यहाँ नहीं चलेंगे, पर तूने तो वो रोना पीटना मचाया कि आखिर पापा को तुझे ये पौधे खरीद के देने ही पड़े।
1: लेकिन दीदी मैं कितनी मेहनत से उनको यहाँ तक लेके आया था और कितने प्यार से मैंने उन्हें लगाया था।
0: पर मानव सेब और ऑर्किड के पौधे हमारे यहाँ नहीं पनप सकते।
1: क्यों
0: नहीं पनप सकते, कह दिया ना।
1: लेकिन क्यों?
0: इसलिए कि अगर पनप सकते होते तो सेब दूसरे राज्यों से क्यों मंगाए जाते, अपने यहाँ क्यों ना पैदा होते और आलू के भाव बिकते।
1: मगर हमारे यहाँ सेब क्यों नहीं हो सकता?
2: क्या नहीं हो सकता मानव?
0: अरे पापा आप आपसे इसने जिद करके वहाँ श्रीनगर में सेब का जो पौधा खरीदवाया था ना, वो यहाँ मर गया, उसी पर मुंह बनाकर बैठा है ये मानव।
2: अरे बेटा उसे तो मरना ही था, वो यहाँ कैसे पनप सकता था?
1: वो क्यों पापा?
2: बेटा क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु वैसी नहीं है जैसी कि सेब के पेड़ या ऑर्किड के पौधे को पनपने के लिए चाहिए।
1: ये जलवायु है क्या?
0: वही मौसम जहाँ सेब होते हैं वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, हमारे यहाँ नहीं पड़ती।
3: हाँ। नहीं नहीं नहीं सृष्टि, जलवायु और मौसम दोनों एक नहीं है।
0: वो क्यों विवेक भैया?
3: अरे सृष्टि देखो, आज जैसे सर्दी है कोहरा छाया हुआ है, कल धूप निकल आए तो मौसम बदल जाएगा, इस तरह मौसम बदलता रहता है।
0: अच्छा हमारे देश का मौसम कुछ महीनों बाद बदल जाता है, सर्दी के बाद गर्मी फिर बरसात।
3: हाँ बिल्कुल, मौसम महीनों में क्या एक दिन में ही कई बार बदल सकता है, जबकि कहीं कहीं की जलवायु को बदलने में हजारों लाखों साल लग सकते हैं।
1: लाखों साल?
0: इसका मतलब हम जो टीवी रेडियो या समाचार पत्रों में पढ़ते सुनते हैं वो मौसम के बारे में होता है, जलवायु के बारे में नहीं?
3: हाँ क्योंकि जलवायु इतनी आसानी से परिवर्तित होती ही नहीं।
0: पर जलवायु से जीवों में तो परिवर्तन आ सकते हैं, है ना विवेक भैया?
3: हाँ यही तो बात है, मौसम से हम निपट सकते हैं।
1: मतलब?
3: मतलब मौसम वहाँ के जीवधारियों के रहन सहन, खान पान, प्रजनन आदि को भी प्रभावित कर सकता है।
2: और जलवायु के बारे में भी तो बता।
3: आप तो जानते ही हैं, जलवायु तो जीवधारियों के पूरे वंश को प्रभावित कर सकती है।
2: कौन जीवधारी कहाँ पनपेगा ये किसी जगह की जलवायु ही निर्धारित करती है।
3: अब मानव तुम डायनासोरों को तो जानते ही हो,
1: वही भारी भरकम शरीरों वाले दानव जैसे जीव।
3: हाँ, वो एक समय धरती पर राज किया करते थे और आज उनका नामो निशान तक नहीं बचा है। जानते हो क्यों?
1: क्यों?
3: किसी बड़ी घटना से पृथ्वी की जलवायु में अचानक परिवर्तन आया, डायनासोर जलवायु के इस परिवर्तन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और मिट गए।
0: तब फिर ये जलवायु है क्या?
4: ये तो सबसे अच्छी तरह तुम्हें बेमौसम आया ये मौसमी व्यक्ति ही बता सकता है। हाँ भाई मैं देखो सूर्य प्रकाश, आज तो मेरा दूध वाला भी आया है और मेरा मेरी पत्नी से झगड़ा भी नहीं हुआ। मैं तो बस
2: देख देख देख देख पवन, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, फिर तो सफाई का है कि दे रहा है। और अब आया है तो चाय पीकर तो तू जाएगा ही है।
4: अरे भाई अब तुम इतना कह रहे हो तो फिर अब पीनी ही पड़ेगी।
2: हाँ हाँ ये एहसान भी मुझ पर ही सही है। अरे वसुधा सुनती हो?
5: क्या है?
2: अरे पवन आया है, मौसम विभाग वाला अपना पड़ोसी।
5: चाय तो ये पीकर ही जाएगा है ना। इस उम्र में भी आप लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत मजा आता है।
4: इस उम्र में क्या कह दिया, ये तो आपने सारा कबाड़ा ही कर दिया। अरे भाई मैं और सूर्य प्रकाश तो अभी जवान है।
2: क्या बात कही तूने, तो भाई फिर तो पकौड़े भी खिलाएंगे।
4: क्या बात है, तो भाभी
5: अच्छे अच्छे चलिए जवान लोग अंदर।

0: हाँ तो सूर्य प्रकाश।
1: भवन अंकल आप भूल बहुत जल्दी जाते हैं।
0: अरे तो भाई अभी सब लोगों को बैठ तो जाने दो। मानव बेटा तू इधर आ मेरे पास, और विवेक तू उस मानव वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जा। हाँ तो सृष्टि
1: जलवायु।
0: हाँ जलवायु किस क्षेत्र में आम तौर पर वातावरण की क्या स्थिति रहती है, तापक्रम कैसा रहता है, पानी कितना और कब बरसता है, हवाएं कैसी और किस दिशा में चलती हैं, धूप वहाँ कितनी तेज होती है और दिन में कितने घंटे तक रहती है, बर्फ पड़ती है कि नहीं और अगर पड़ती है तो कितने दिन तक उस क्षेत्र को ढके रहती है, इस सब को काफी लंबे समय तक देखकर उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसे कहते हैं जलवायु।
2: पर अंकल लंबे समय तक।
0: हाँ विवेक, मानकों के आधार पर 35 वर्ष के मौसम संबंधी इन आंकड़ों का अध्ययन करके उनसे जो निष्कर्ष निकलता है उसे मानते हैं वहाँ की जलवायु।
1: 35 साल।
0: हाँ मानव काफी लंबा समय है ये, है ना। अतः अब कुछ लोग ये भी मानने लगे हैं कि 10 साल तक के मौसम संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करके भी किसी जगह की जलवायु का निर्धारण किया जा सकता है।
1: अच्छा। मतलब ये कि किसी जगह के लंबे समय का औसत मौसम ही उस जगह की जलवायु कहलाता है।
0: हाँ।

0: अब तुम ठीक समझे सृष्टि।
1: और इसका मतलब ये कि किसी जगह की जलवायु बहुत सारे परिवर्तनों से मिलकर बनती है।
0: बिल्कुल सूर्य प्रकाश, ये बात तो है भाई, बहुत सारे कारक मिलकर किसी जगह की जलवायु का निर्धारण करते हैं।
2: अंकल बहुत सारे कारक, जैसे
0: जैसे तुम्हारे पापा, मतलब कि सूर्य को ही ले लो।
3: नहीं पवन जी, सूर्य को नहीं, अभी तो इस चाय को ही ले लीजिए।
0: अरे वाह वसुधा भाभी, वाह, यू आर ग्रेट भाभी।
1: देखा देखा देखा बच्चों, वसुधा की चाय ने कैसे बदल दिया पवन की बातों का मौसम।
0: अरे भाई मौसम ही तो बदला है ना सूर्य प्रकाश, जलवायु नहीं।
1: अरे जलवायु भी बदल जाएगी जब वसुधा पकौड़ियाँ खिलाएगी।
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं, तब भी नहीं, क्योंकि मौसम में जल्दी जल्दी होने वाले इन परिवर्तनों का जलवायु पर कोई असर नहीं पड़ता भाई। रोजमर्रा की घटनाओं से मौसम बदलते हैं, जलवायु नहीं। अभी चाय पी जाए।
1: तुम भी लो, लो, लो, लो, लो।
0: हाँ तो भाई क्या कह रहा था मैं,
3: सूर्य
0: सूर्य सूर्य ही सारी पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
1: हाँ, इसीलिए किसी जगह की जलवायु के निर्माण में सूर्य प्रकाश, नहीं क्या,
0: सूर्य,
1: हाँ सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है।
0: सूर्य प्रकाश, सूर्य अपार ऊर्जा उत्पन्न करता है भाई, हमें तो उसका 1/2 अरबवां भाग ही मिल पाता है, फिर भी बच्चों जानते हो ये कितनी होती है?
3: कितनी?
0: 230 खरब अश्व शक्ति प्रति मिनट।
3: 230 खरब अश्व शक्ति।
0: हाँ, अगर हम इस सारी ऊर्जा को प्रयोग कर सकें तो 1 मिनट में सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से पृथ्वी वासियों का 2 बरस तक का काम चल सकता है।
2: अंकल मैंने भी कहीं पढ़ा है कि सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली इस ऊर्जा में अगर 13% की भी कमी हो जाए तो सारी पृथ्वी करीब 1 मील मोटी बर्फ की तह के नीचे दब सकती है।
3: और अगर इस ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाए तो
2: सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा में 30% की बढ़त से ही पृथ्वी पर हर जीवित वस्तु जलकर राख बन सकती है।
0: करीब करीब ठीक ही कह रहे हो तुम विवेक, ये सूर्य पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में और इसे हमारे रहने लायक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
1: भाई, तभी तो लोग हमें देवता, मतलब सूर्य को देवता मानते हैं।
3: पर अंकल सूर्य से तो ये गर्मी, मेरा मतलब ऊर्जा, हमें धूप के रूप में मिलती है ना?
0: हाँ मानव बेटा, अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो सूर्य से ये ऊर्जा हमें 3 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मिलती है। विवेक तुम जानते हो कि कौन सी?
2: हाँ हाँ अंकल जानता हूँ, एक तो पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट तरंगे, दूसरे दिखाई देने वाले प्रकाश की तरंगों के रूप में, और तीसरे अवरक्त या इंफ्रारेड तरंगों के रूप में।
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने विवेक, पर जैसे ही ये तरंगे वायुमंडल की ऊपरी सतह तक पहुंचती है तो इनका लगभग 1/3 हिस्सा बादलों, सूक्ष्म धूल कणों और गैसों के अणुओं द्वारा वापस परावर्तित कर दिया जाता है।
3: सत्यानाश, कितनी सारी ऊर्जा बेकार में गई। नहीं तो
4: नहीं मानव, अगर ये ऊर्जा वापस परावर्तित ना होती तो पृथ्वी पर जीवन का हर रूप जलकर राख हो गया होता।
3: तुम्हें कैसे मालूम दीदी?
4: अरे बुद्धू, अभी विवेक भैया ने नहीं बताया था कि पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली ऊर्जा में अगर 30% की भी बढ़ोतरी हो जाए तो पृथ्वी का हर जीवित प्राणी जलकर राख हो जाएगा।
1: देखा पवन, सृष्टि बेटी की याददाश्त।
0: सृष्टि बेटा, जितनी भी ऊर्जा अब वायुमंडल से गुजरती है उसका करीब 15% हिस्सा वायुमंडल की ओजोन, धूल कणों, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों द्वारा सोख लिया जाता है।
1: हाँ, और इसका मतलब है कि सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच पाने वाली ऊर्जा का आधा हिस्सा ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है।
0: क्या खूब कही भाई, हिसाब ही तो तुम पक्के।
1: वो तो
0: करीब 51% ऊर्जा ही इस तरह धरती की सतह तक पहुंच पाती है।
2: और यही ऊर्जा प्रभावित करती है जलवायु को, है ना?
0: हाँ विवेक, जब सौर ऊर्जा की ये किरणें पृथ्वी की सतह पर चट्टान, रेत, मिट्टी और पानी आदि से टकराती है ना, तो ये उस पदार्थ के अणुओं को गतिशील कर देती हैं, जिससे हमें मिलती है गर्मी या ऊष्मा,
4: और इस ऊष्मा से नियंत्रित होती है पृथ्वी के किसी भी हिस्से की जलवायु, है ना पवन अंकल?
3: अंकल आपकी बातों से तो ये अनुमान लगता है कि सूरज धरती को हर जगह एक सी ऊर्जा देता है, तब धरती के अलग अलग हिस्सों की जलवायु अलग अलग कैसे हो जाती है?
0: दरअसल बेटा ऐसा धरती की अपनी खूबियों की वजह से होता है।
3: धरती की खूबियाँ, वो कौन सी?
0: अच्छा बेटा एक बात बताओ, हमारी धरती का आकार कैसा है?
4: गोल, पर ध्रुवों पर थोड़ा चपटा।
0: अरे, इसीलिए धरती की आकृति नाशपाती जैसी हो जाती है। इस आकृति के कारण सूरज की किरणें उसके हर क्षेत्र पर एक समान तीव्रता से नहीं पड़ती।
4: वो कैसे अंकल?
0: देखो सृष्टि, पृथ्वी की आकृति के कारण भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जिससे वहां पर पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा सबसे अधिक होती है
2: और इससे भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है।
0: हाँ विवेक, अब हम जैसे जैसे मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उस जगह पर पड़ने वाली किरणों का कोण कम होता जाता है,
2: जिससे उस जगह पर इन किरणों की तीव्रता भी कम होती है।
0: बिल्कुल ठीक। अब ध्रुवों तक पहुंचते पहुंचते तो सूर्य की किरणों का कोण इतना कम हो जाता है कि वहां पर तापमान शून्य के आसपास हो जाता है।
2: वहां पर कम दबाव का क्षेत्र बनते ही ठंडे क्षेत्रों की हवाएं उस जगह को भरने के लिए चल पड़ती हैं, जिससे बीच के क्षेत्रों में भी हवाएं बहने लगती हैं।
4: इस प्रकार तो हवाएं भी किसी जगह की जलवायु को निर्धारित करती होंगी।
0: भाई वाह, बिल्कुल ठीक कहा तुमने सृष्टि, पर पृथ्वी का घूमना भी हवाओं की दिशा को बदल देता है। इसीलिए आमतौर पर ये भूमंडलीय हवाएं पूरब पश्चिम दिशा में बहती हैं, ना कि उत्तर दक्षिण दिशा में।
4: अच्छा पवन अंकल, एक बार हम लोग चेन्नई गए थे, भयंकर गर्मी थी वहाँ। फिर हम लोग वहाँ से ऊटी गए, वहाँ का मौसम इतना अच्छा था कि बस मजा आ गया। अब ये दोनों जगह तो भूमध्य रेखा से करीब करीब एक सी ही दूरी पर है।
1: पवन, सृष्टि शायद ये पूछना चाहती है कि एक ही जगह पर पहाड़ी भाग की जलवायु अलग हो जाती है और मैदानी भाग की अलग, वो कैसे?
0: देखो सृष्टि, सूर्य की ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह पर पड़ती है, उसका काफी भाग पृथ्वी की सतह से परावर्तित होकर सतह के पास के वायुमंडल में जाकर उसे गर्म रखता है। पहाड़ों की ऊंचाई के कारण ये ऊर्जा वहां तक नहीं पहुंच पाती।
4: वो क्यों अंकल?
0: देखो मानव, बादल और धूल कण जो कि वायुमंडल में अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर होते हैं, वो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाती इस ऊर्जा को फिर धरती पर परावर्तित कर देते हैं
2: और इससे सौर ऊर्जा की ये मात्रा पर्वतों की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती और वहां का वातावरण ठंडा रहता है।
0: भाई पहाड़ों पर जब बर्फ जम जाती है ना, तो ये भी अपने ऊपर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का 70-90% भाग वापस वायुमंडल में परावर्तित कर देती है।
2: और पहाड़ों पर वायु काफी विरल होती है, इसमें उन धूल कणों की मात्रा भी काफी कम होती है जो इस बाहर जाती सौर ऊर्जा को पुनः वापस पृथ्वी की सतह की तरफ परावर्तित करते हैं।
0: सो इन सब घटनाओं के सम्मिलित असर की वजह से पहाड़ों पर मैदानी भागों की अपेक्षा तापमान काफी कम रहता है। समझ गए ना बच्चों?
4: जी।
0: अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ।
1: अरे अरे बैठो ना पवन, जल्दी क्या है?
0: अरे नहीं नहीं सूर्यप्रकाश, दरअसल मैं तुम्हारी भाभी से कहकर आया था कि मैं बस 2 मिनट तुमसे बात करके यूं आया। वो मेरे साथ बाजार जाने के लिए तैयार होकर बैठी होगी और मैं यहाँ बातों बातों में सब भूल गया।
4: पर पवन अंकल वो...
0: ना बेटा, अब कुछ नहीं, मैं चलूं वरना तुम्हारी आंटी मेरे घर पहुँचते ही मुझे कच्चा चबा जाएंगी।
1: अरे क्यों भाई, क्या घर में कुकिंग गैस खत्म हो गई है?
0: गगन,
1: हाँ?
0: आज के डेटा देख लिया तुमने?
1: हाँ पवन, पर क्यों, डेटा के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो?
0: वो इसलिए गगन कि आज शर्मा जी नहीं आए हैं, आज के मौसम का पूर्वानुमान हमें ही फीड करना है।
1: ओ, अच्छा।
5: नमस्ते पवन अंकल।
0: अरे विवेक, आज ऑफिस में कैसे?
4: बस अंकल। नमस्ते नमस्ते अंकल।
0: अरे सृष्टि, मानव तुम भी? नमस्ते नमस्ते।
1: आओ भैया, कैसे है तुम लोग?
4: उस दिन हम लोग जलवायु की बात ही कर रहे थे कि कल मुझे स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला करने को, जानते हैं किस विषय पर?
0: क्या, जलवायु पर?
4: हाँ, मैंने भी जानबूझकर ले लिया, सोचा आप तो हैं ही, सो मदद कर देंगे और गगन अंकल भी। इसीलिए तो मैं विवेक भैया के साथ यहाँ पर आई हूँ। और रहा मानव का सवाल, तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर मानव चिपक ही जाता है।
0: अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, आओ बैठो तो सही, खड़े क्यों?
1: अब बताओ तुम्हें जानना क्या है जलवायु के बारे में?
4: ये तो ठीक से नहीं पता गगन अंकल कि क्या जानना है, पर पवन अंकल ने हमें बताया था कि पृथ्वी की जलवायु के निर्धारण में सूर्य और खुद पृथ्वी का क्या योगदान है।
2: हाँ अंकल, बाकी और भी तो बहुत से कारण होंगे जो किसी जगह की जलवायु को नियंत्रित करते होंगे।
1: हाँ विवेक, है ना, सूर्य और धरती की विशेषताओं के अलावा सागर और पहाड़ भी पृथ्वी की जलवायु के निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों पवन?
0: हाँ गगन, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग में तो सागर ही है। धरती पर पाए जाने वाले पानी का 97% पानी तो इन्हीं सागरों में भरा है।
2: सागरों से ही तो वो जलवाष्प बनती है जो जमीन पर जाकर बारिश करती है ना।
6: क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल का 3/4 भाग तो सागरों के ऊपर ही स्थित है, अतः इसका जलवायु के निर्धारण में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है।
0: देखो बेटा, सौर ऊर्जा के प्रभाव से समुद्र के पानी को गर्म होने में भी काफी समय लगता है,
6: और इसीलिए समुद्र के तटों पर बसे क्षेत्रों में जलवायु के परिवर्तन काफी हल्के होते हैं।
4: मतलब?
0: देखो बेटा, यहाँ दिन रात और गर्मी सर्दी के तापक्रमों में काफी कम अंतर होता है।
4: हाँ, जैसे मुंबई में ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा सर्दी, बस थोड़ी बारिश ज्यादा होती है।
6: बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और वो भी इन्हीं सागरों के कारण।
0: इसके अलावा समुद्र के अंदर ठंडी और गर्म पानी की जलधाराएं बहती हैं। ध्रुवीय समुद्रों से ठंडे पानी की जलधाराएं सागर की तली के निकट बहती हुई इस ठंडे पानी को हजारों किलोमीटर दूर ले जाती हैं।
2: अंकल, अटलांटिक महासागर की तरफ से गर्म पानी की एक धारा उत्तर की ओर भी तो बहती है।
6: हाँ विवेक, इसमें मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी की धारा भी मिलती है, तब इसे खाड़ी प्रवाह कहते हैं।
2: अच्छा।
0: देखो विवेक, गर्म पानी की इस समुद्री धारा के चलते पश्चिमी यूरोप के सागर तट पर बसे इलाके, जिन्हें भूमध्य रेखा की दूरी के चलते एकदम ठंडा होना चाहिए था, उनकी जलवायु थोड़ी गर्म होकर अविश्वसनीय रूप से सुहावनी हो जाती है।
4: अच्छा। मतलब ये कि समुद्र के अंदर बहने वाली ये गर्म और ठंडे पानी की धाराएं भी समुद्र तटीय इलाकों की जलवायु को बदल देती हैं।
6: और सागरों के अलावा पहाड़ भी किसी जगह की जलवायु को गंभीरता से प्रभावित करते हैं।
4: हाँ, उस दिन पवन अंकल ने बताया था कि क्यों पहाड़ों पर मौसम ठंडा रहता है।
6: हाँ मानव, इसके अलावा पर्वत जलवायु विभाजक का काम भी करते हैं।
4: जलवायु विभाजक? वो कैसे पवन अंकल?
0: देखो सृष्टि, मान लो हम किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़े हो जाएं, तो इसके दोनों तरफ ढलान होगी, है ना? एक तरफ की ढलान की तरफ से हवा आती है, इसे विंडवर्ड ढाल कहते हैं,
6: और इसके दूसरी ओर की ढलान को प्रतिपवन या लीवर ढाल कहते हैं।
0: जब समुद्री तल से ठंडी और नम हवा बहते बहते इन पर्वतों तक पहुंचती है ना, तो रास्ते में पर्वत पर जाने पर ये उससे टकराकर और ऊपर उठती है, जिससे ठंडी होकर यह पर्वत के इसी तरफ अपने जलवाष्प का खजाना खाली कर जाती है,
4: यानी कि बरस जाती है।
0: हाँ मानव, जब पर्वत की चोटी के ऊपर से होकर ये प्रतिपवन ढाल की ओर पहुंचती है, तो इसमें नमी बची ही नहीं होती, इसलिए प्रतिपवन ढाल पर बसे इलाके सूखे रह जाते हैं।
4: मतलब पर्वत के एक तरफ खूब बारिश होती है और दूसरी तरफ सूखा।
0: हाँ सृष्टि, इसीलिए तो गगन कह रहा था कि पर्वत जलवायु विभाजक का काम करते हैं।
6: अब हमारे हिमालय को ही ले लो, इसके कारण गंगा यमुना के कछार में खूब बारिश होती है, उत्तर की नदियों को पानी मिलता है, खुद हिमालय की चोटियों पर बर्फ जमने के लिए नमी मिलती है,
0: और इसकी प्रतिपवन ढाल पर है तिब्बत, जहाँ काफी कम ही बारिश हो पाती है।
6: दूसरे, ये ठंडी साइबेरियाई हवाओं को भारत में घुसने नहीं देता, जिससे हमारे यहाँ की पहाड़ी जलवायु सुखद हो जाती है और तिब्बत की इतनी कठिन।
2: अच्छा गगन अंकल, वनों की भी तो किसी जगह की जलवायु के निर्धारण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
6: हाँ विवेक, वनों की ही क्या, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सारी वनस्पतियों की पूरे विश्व की जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका है।
4: अच्छा। वो कैसे गगन अंकल?
6: देखो सृष्टि, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाते हैं। जानती हो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या असर डालती है?
4: हाँ, ये तो ग्रीन हाउस गैसों में से एक है।
6: बिल्कुल ठीक कहा तुमने सृष्टि, ये उन ग्रीन हाउस गैसों में से एक है जो सूर्य के विकिरण को पृथ्वी पर आने तो देती है, पर पृथ्वी की सतह से परावर्तित अवरक्त विकिरण को वायुमंडल से निकलने से रोक देती है,
4: और इससे वायुमंडल का तापक्रम बढ़ जाता है, इसे ही तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
0: शाबाश मानव, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब सोचो सोचो, अगर वन इस कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी खपत ना करें तो
4: वातावरण का तापक्रम बढ़ जाएगा,
6: और वो भी इतना कि रहना मुश्किल हो जाए, पहाड़ों पर की बर्फ पिघल जाए, सागरों का स्तर बढ़ जाए, तट पर बसे शहर सागर में डूब जाएं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़े कि सांस लेना कठिन हो जाए।
0: इसके अलावा जंगल एक और परिवर्तन लाते हैं अपने आसपास की जलवायु में।
3: वो क्या पवन अंकल?
2: मैं बताऊं अंकल, पौधे और अन्य वनस्पतियां भूमि से पानी खींचकर वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में छोड़ते रहते हैं, जिससे वनों की जलवायु आर्द्र या नम होती है। दूसरे ये उस स्थान की बारिश को भी तो प्रभावित करते हैं।
6: और जलवायु के दृष्टिकोण से ऐसे क्षेत्र को वुडलैंड एरिया कहते हैं।
3: वुडलैंड एरिया?
6: हाँ, इन क्षेत्रों की एक विशेष प्रकार की जलवायु होती है।
3: विशेष प्रकार की क्यों?
0: वो इसलिए मानव कि इस प्रकार के वनों में प्रकाश की, खासकर पराबैंगनी विकिरण की बहुत कम मात्रा जमीन तक पहुंच पाती है। बहुत घने जंगलों में तो सौर ऊर्जा का 1/10,000 हिस्सा ही वनों की भूमि तक पहुँच पाता है।
6: हवाएं भी इन घने वनों में तेजी से नहीं बहती। दूसरे, ऐसे जंगलों की वनस्पतियों से इतनी नमी पैदा होती है जिससे वहाँ स्थानीय क्षेत्र में बारिश होती है।
0: पर ये बारिश भी पूरी की पूरी वनों की जमीन तक कहाँ पहुँच पाती है?
6: हाँ, बहुत सारी बारिश की बूंदें पत्तियों से टकराती हैं और ये पानी वहाँ पत्तियों के ऊपर छितरा कर ऊपर ही रह जाता है, जहाँ से ये सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। इस तरह बहुत सारा पानी तो सूरज की गर्मी से ऊपर ही ऊपर उड़ जाता है।
0: भाई, थोड़ा बहुत बारिश का पानी जो जमीन तक पहुंचता भी है, वो भी जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां बहाकर नहीं ले जा पाता, वो वहीं पड़ी सड़ती रहती हैं,
6: जिनसे कभी कभी मीथेन भी बन जाती है।
2: और मीथेन भी तो एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है।
6: इसीलिए वनों की जलवायु अलग तरह की होती है।
3: अलग तरह की कैसे गगन अंकल?
6: यहाँ दिन तो काफी ठंडा रहता है पर रातें गर्म हो जाती हैं।
0: हेलो, हाँ हाँ भेज रहा हूँ। अरे अभी कुछ गेस्ट आ गए थे इसीलिए। अरे पता है शर्मा जी आज नहीं है, मौसम की सूचना हमें ही फीड करनी है। ओके ओके ठीक है।
3: तो पवन अंकल अब हम चलते हैं।
2: हाँ अंकल, काफी समय ले लिया आपने।
3: हाँ, और इस चक्कर में आप अपना काम भी नहीं कर पाए।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे बस अभी बनाए देते हैं वेदर रिपोर्ट। और हाँ सृष्टि बेटा, प्रोजेक्ट में अगर कोई और दिक्कत हो तो फिर आ जाना।
3: जी,
0: ठीक है
3: जी।
2: थैंक यू अंकल।
3: अच्छा अंकल,
2: बाय।
7: विवेक बेटा, देखो दरवाजे पर कौन है इस समय रात को।
2: हाँ जी बाबा, देखता हूँ। अरे ताऊ जी आप आइए।
7: प्रणाम।
2: पापा ताऊ जी आए।
7: अरे दादा, आप पाव लागू।
8: अरे खुश रहो सूरज, खुश रहो। कैसे हो?
7: बस बिल्कुल ठीक हूँ। अब बहुत लेट पहुँचे दादा, गांव से लेट चले थे क्या?
8: क्या करें, चले तो टाइम पर ही थे, वो रास्ते में मोटर खराब हुई।
7: अरे दादा, अब ऐसा करो, थक गए होगे, हाथ पांव धो के खाना पीना खा लो फिर आराम करो।
8: अरे नहीं सूरज, अब खाना नहीं खाएंगे।
7: हाँ,
8: अब तो हम आराम करेंगे। हाँ, ऐसा करो, हमारी खटिया बाहर बिछवाए दो।
7: अरे बाहर दादा?
8: अरे गांव के आदमी हैं, अरे बाहर ही सोएंगे।
7: अच्छा, जैसी मर्जी है आपके दादा। ठीक है, सुबह बात करेंगे दादा।
3: ताऊजी आप ब्रश कर रहे हैं?
8: हाँ हाँ हाँ, मालूम बिटुआ।
3: तो आपने अपने सामने नल क्यों खुला छोड़ रखा है?
8: ओ बिटुआ, ब्रश के बाद खुला भी तो करना पड़ेगा ना।
3: अरे ताऊजी, तो तभी नल खोलिए ना, पहले से क्यों खोल रखा है?
8: है?
3: ताऊजी आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इस तरह आप हर रोज करीब 1 बाल्टी पानी बिना बात के नाले में बहा देते हैं। यानी कि 1 महीने में 30 बाल्टी और 1 साल में 365 बाल्टी, और शहर का हर आदमी यही तो कर रहा है। इस तरह लाखों बाल्टी पानी हर साल आप लोग बेकार ही नाली में बहा देते हैं।
8: ये बात तो है माना बिटुआ,
3: और वो भी तब जब दुनिया की आधी आबादी को आज तक पीने का साफ पानी नसीब नहीं है, फिर तो ये अपराध हुआ ना ताऊ जी।
8: अरे हाँ माना बिटुआ। अरे बिटुआ तू कितना समझदार हो गया है रे। तो ले, मैं आज से प्रण करता हूँ कि पानी की इस तरह की बर्बादी कभी नहीं करूंगा।
3: ये हुई ना बात हमारे
7: ताऊ जैसी।
9: धरती मेरी धरती, अभिया विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 31वीं कड़ी सुन रहे थे जलवायु।
10: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूँ सार, मिलिए डॉक्टर से न करें।

0: विचार अगर दिखे टीबी के आसार।
1: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
0: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
1: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं, तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे
2: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
0: बहुत

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग एआई साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Dear Kiran, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

0: मुकेश, ये अभी 50 साल का है, और ये बड़ा बेटा अरुण, ये हमेशा 21 का ही रहेगा।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। Beautiful track. Music director Bhims Sesirolio, singers Pawan Singh and Jonita Gandhi, lyrics Vayu Srivastava.

0: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खातिर भी तो कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
1: तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है।
2: अरे मम्मी, सरकारी नौकरी लग गई।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878937700. Seats are limited. Hurry up, कहीं देर ना हो जाए।

0: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
1: क्या आपको बुखार आ रहा है?
2: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
1: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
2: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
1: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
2: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
1: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
2: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
2: याद रखना, बुखार में देरी पड़ेगी भारी। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: इसीलिए तो कहता हूं
1: यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो
0: बाकी

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़ी से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Solo Sharda.
6: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
8: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
7: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: महावारी एक महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक कुदरती घटना है, फिर भी ये दुनिया भर में लाखों महिलाओं के लिए नियमित तौर पर और भयंकर रूप से उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में रुकावट बनती है।
2: माहवारी एक ऐसी घटना है जिसका सामना महिलाएं और लड़कियां मानव जाति की शुरुआत से ही करती आ रही हैं। हालांकि यही मानव जाति के लगातार अस्तित्व में बने रहने का कारण भी है, फिर भी एक महिला की माहवारी के साथ बहुत ज्यादा शर्म और संकोच जैसे भाव जुड़े हुए हैं।
1: माहवारी को अक्सर खून, अशुद्धता और घृणा से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर गलत बात है। इसी कारण से महिलाएं अपनी माहवारी के बारे में बात करने में संकोच महसूस करती हैं।
2: इसलिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही माहवारी और मासिक चक्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। माहवारी से संबंधित गलत अवधारणाओं या मिथकों को दूर करने में लड़के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: माहवारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था

0: मुझे पूरा करना ही होगा।
1: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
0: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
2: हाँ माँ जी।
3: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके

0: ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी, अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो दस्त या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: आज मैं तारा पाकू काट कर पूरे घर में बीमारी फैला दूंगी।

0: अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
2: बाय बाय।

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।